कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से सुबह के 5:56 हो रहे हैं।

और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का सोमवार दिन और तारीख है 1। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीडी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतर और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 की दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

0: 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्में गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। दोस्तों अब सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी

लिए लाया गया है जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगाम जाब एमदगला लुयो पोलोग आलो लोखेन आरोगो घालोमेंकेन अबालोक मेलेन जिदाग नांगो मारियो मत मलोग जित आलो दो बार ओगो प्रेम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मु मग असिनापु आरालोक मु नाम गो नाम रु एमने आकाशवाणी लो मन की बात एमला मेलेन जिदाग ला मेनला मुग भारत गदा होक कोयुम जिमी ओक नाम नासु मंदिर ओक रानी राजा गदग नाम हदुहरा याद नगो कादा कुनादु अककना अबाबा रूगा दरने अल्लुबा तूसिबाल गेकला काकें जाब लस कुल्प अमला गोम्मेंद ग पेले लोक अलजाब इकातादु कुनक अमला अलजाब मेंकें जितो ओक मुमेंतला मलहर छत्तीसगढ़ स्टेट लोकसिन याका जागो मालें तुक नमक अमला सिमें पाजिता तु ओगो 627 सेंचुरी होमोय लोक महारिषि बाल अर्जुन पांडामणि डायनेस्टी गदग बबकुनाम कोपर प्लेट गोसिन आउम गोसिन मालेन लाकु अल्लुब मापातुक नमक अमलासी मेंपाजी तु ओक मु मेंटला नेदरलैंड कंट्री लो एंसेंट होमोय ओक कोपर प्लेट डोन गोक्सिंग ओ भारत गिदा होगो गाला लेतु कुनमक अमलासी मेनलेन जितु ओक मु मेन लांगु ग भारत गिदा होके गुमिन होइन गदमने इजी माज ब आगनाम होमोय ब इत्तादा कुनक एक लगाब नु नमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेरे लोक यो सब गाइडलाइंस एम ने जिला ले तु दे ओको काल ताल दोला दोनम तीन नाम अब हम सिंह काल ताल दोला दोल तिल येरु जिस तोला का अमला सिंह आकाशवाणी लोक मेलें जी का टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी टीबीआरएल हाई कालीवारी बोम गो टेस्ट इका नाम अलीबा सक्सेसफुल का एक ना टेस्ट अब एम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ रामगढ़ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा लोक फैसिलिटीज अब अल्लुब हरदोब लेनाम लगाब हेकना अब अल्लुब सक्सेसफुल ब इका ओक एक ना टेस्ट अब एमने एयरपोर्ट गद मुनो अल्लुब इगमेंग लासिन इतु ओल्ड नो थबाको दे एमला टिंगु सर्कुल तवांग डिस्ट्रिक्ट लोक लोदुम दग आलो ओगो चीफ मिनिस्टर नरमे पेमा खांडु मु निबो बोगुब पुलिक जिदागला गुसा हुसाना यूथ निजरिया में ओगो निलुम नित असाबो ओगो अनन्याम रुगा दमने मेनला दुम बिरी ओगो सिगरेट अबागत हिगिमने यद गो इला एक दि दोमा तिमा ब अकेनाक ने इकारु लग जुका अमला याका जागो नीतम दोई एमसिम पोतु ओगो मु एम पोदागला मेनला हिनी मनी ग अनि अरा होगो काखा नाम दुम बिरी सिगरेट ओगो गुटका लोक बेमार हजार ताका ताका मान में याका जागो नेंदा कुन्नक अमला अलजाब मेंकें जिला सिन इतु ओगो एक ने कैंप लो प्री मेडिकल कैंप वोसिन इतो ओगो 200 निदुम येर दोलु नी गद्द याका जागो बेनिफिट्स अबाबा एमसिन पातु ओक अकेन एक ना कैंप एमने इंडियन आर्मी अंडर गजराज क्रॉप्स गद ला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टिंगपू लोक अन्य बाकेंगो ब इदुम हिदागला अलजाब इगमेंग तो ओगो चीफ मिनिस्टर में सोशल मीडिया लोसिन पोस्ट दागला मेनला अन्य दिक्क ब इंडियन आर्मी गद गुमिन होइन एमने अल्लुब येनाम दुनाम लगाब हकना अलना अगर एमने गर्ब गदाग नाक एमलासिन एलेन दागला मुग असिनापु आरा राई लोक कोई जादालासिन इका तानगाद नुनु गालो मेंके नागम हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक क तपदु होक इनेकुन ग तरियालो हुनिबार ओगो सियांग जोन टू रोइंग लोक दीनदयाल उपाध्याय पारसी शाम महा अभियान 2026 एमने लोसुम दागे आलो ओगो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन में पुलिक जितो एम पुलिक जिदा ला सोशल मीडिया लोसिन में एलेन दागला एतु मुग कार्यकर्ता गदमने माजिबे कोई ज्यादा लासिन इतु ओक मुग अलग लोक दिबांग बेली डिस्ट्रिक्ट लोक तब कब कुनाम सोशल वर्कर्स गदम सिन आगाम रूब आमेनक लगली लासिन इका मलोग जीत आलो दो बार ओगो कुनसा लोक एपीएससी डिपार्टमेंट गद गोल्डन जुबली आलोब लोदुम दागलो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अजय थमता ओक मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट अरुणाचल प्रदेश ओजिंग तासिंग मुंग अलग लोक आगाम रूब एपीएससी लर्जरी बास गो अली जाब जिले दागला जानदागो लेकोक जिका ओगो एम्ब लेकोक जिदाकलाम मिनिस्टर ओजिंग में सोशल मीडिया लो सिम पोस्ट दगला मेन ला हिलो गे हक ने लर्जरी बास जिले नाम हिगी मुग इस्ते थो के पर्स एबार लर्जरी बास लो आधा कुन्ना के एमलासिम मेंटो ओक हिलो गे हक ना हिगी आल देने अन्य अलो लोगों के इस्ते थो को दो यु कृपा नाम को बिरुता दुना के एमलासिम एलेन जिता लासिम इगेबाम एमपी लोकसभा वेस्ट त्रिपुरा ओक लकलो के सिप मिस्टर बे इका कुने त्रिपुरा लोक नर्म बिप्लव कुमार देव मुन्य मलोग जीत आलो लो दोन लोम लगा बे ऑफिशियल विजिट बे तावांग डिस्ट्रिक्ट लो पुलिक का मुन्य पुलिक दागे ओगो तावांग डीसी रिंचिन लेता एसपी तासी दारांग ओक डिप्टी एसपी तासो कातो मुन्य तावांग पुलिस गदम एक दुग दुला आगाम रूबे गार्ड ऑफ ऑनर बे इरिक मेनरिक दागला तोमरिकम अल्लुब इकाम Central Board of Secondary Education CBSE gaddam menla ngulu isga on mark portal ababa ekna ru gaddam ne alliba monitoring la yekaduna ke amla gumin hoin amne menlen jitu ok monu mentala expert team of cyber security professional jabak na ru gaddam ne adak ru be government ke agency lokem lalen gella tolik tuk namak amla sin social media lo jilen lasin ika ok kliya balom सिंगापुर ओपन एमला बैडमिंटन हिक्का हिकलो भारत ओके इंडोनेशिया देश अन्य फाइनल लो हालन दागला हिक्का हिप मीन्स तो कु ओगो भारत इंडोनेशिया एमने हिपक्का कु 21-16 लोक हिगुम तो कु ओगो एकने कली अबा एमने मलोग जीत अलो ओगो सिंगापुर लो कली तो ओके इंडिया के खिलाड़ी अन्य अमीन कु एस रंकी रेड्डी ओके सिराज चेट्टी मुन्या कु

राजधानी और राज्य के विशिष्ट समाचारों के बाद अब समय हो चला है उस कार्यक्रम का जो आपकी सुबह को एक न केवल तारोताजा बनाता है बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। जी हाँ, नए दिन की इस सुनहरी धूप के साथ हम लेकर हाजिर है आपका अपना पसंदीदा और विशेष प्रस्तुति सुबह सवेरे।

अरुणाचल के इस खूबसूरत मौसम में जहां पहाड़ों से छनती हुई ठंडी हवाएं और चिड़ियाओं की चहचहाहट हमें एक नए कल की शुरुआत का संदेश देती है, वहां सबसे पहला सुख हमारे निरोगी काया है। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वास्थ्य मस्तिष्क का वास होता है, इसीलिए इस बागडोर बड़ी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य है। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके खुद को हमेशा के लिए ऊर्जावान और बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आइए सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही मधुर और प्रेरणादायक गीत के साथ। सुनिए ये सुहाना गीत और जुड़िए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर।

गीत के इस मधुर आनंद के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुबह सवेरे में। श्रोताओं, आजकल हम सब अपनी नौकरी, व्यवसाय और रोजमर्रा का के कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर शरीर ही साथ ना दे तो ये सारी कामयाबी किस काम की। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसी धरोहर दी है जो बिना किसी खर्चे के हमें आजीवन स्वास्थ्य रख सकती है, और वो है योगा। योगा सिर्फ शरीर को मोड़ना या कठिन आसान करना नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और आत्मा का एक मिलन है। सुबह सुबह जब आप सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय निकालकर सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। इसके साथ ही प्राणायाम यानी कि सांस लेने की सही प्रक्रिया जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को मजबूत बनाती है और दिमाग को शांत करती है। आज के इस तनाव भरे दौर में योगा ही एकमात्र ऐसे साधन है जो आपको मानसिक शांति दे सकता है। तो चलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि हर सुबह थोड़ा समय योगा को जरूर देंगे, और अब आपकी सुबह को और भी रसमय बनाने के लिए पेश है हमारी अगली संगीतमय प्रस्तुति।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, अभी हमने योगा की बात की, लेकिन जो लोग किसी कारणवश योगा नहीं कर पाते उनके लिए किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि चलता फुर्जा ही सही रहता है, यानी जो शरीर चलता फिरता रहेगा वही बीमारियों से बचा रहेगा। हमारा अरुणाचल तो वैसे ही इतनी खूबसूरत है, यहाँ की सब्ज वादियों, ऊंचे नीचे रास्तों और शांत सड़कों पर सुबह सुबह तेज कदमों से चलना यानी ब्रिस्क वॉकिंग करना अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। सुबह की ताजी हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिल मजबूत होता है और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आप चलने के साथ थोड़ी और मेहनत करना चाहते हैं तो सुबह की जॉगिंग या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स और पुशअप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे हमारी मसल्स एक्टिव होती है और हड्डियां मजबूत बनती है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ जो जोड़ों का दर्द होता है उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपने शरीर को हमेशा ढलाने और चलाने की आदत डालें।

इस शारीरिक व्यायाम के साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स है जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, उशापन यानी वाटर थेरेपी। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए कम से कम एक या दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। यह हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरी बात, मेरा नाश्ता मेरा स्वास्थ्य। हमारा नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना है। नाश्ता कभी भी स्किप ना करें और इसमें न्यूट्रिशियस चीजें जैसे कि ताजे फल, अंकुरित अनाज, दलिया या दही को शामिल करें। जितना हो सके सुबह के समय तेलिया और भरी भारी खाने से बचें। तीसरी बात, प्रकृति से जुड़िए। हमारे आसपास जो लोकल और सीजनल साग सब्जियां मिलती हैं उनका सेवन अधिक करें। प्रोसेसिंग किए हुए पैकेट बैन फूड और बासी खाने से जितना हो सके दूर रहे। चौथी और सबसे अहम बात, पर्याप्त नींद और पानी। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी यानी मैंडेटरी बनाइए और रात

को 7 से 8 घंटे की सुकून की नींद लें। नींद पूरी होगी तो मानसिक तनाव अपने आप आधा हो जाएगा। चलिए सेहत और तंदुरुस्ती की इन ढेर सारी बातों के बीच एक बार फिर संगीत के आंगन में चलते हैं और सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत और मधुर नगमा।

दोस्तों, क्या बात है। इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ हमारा मन और भी खुशनुमा हो गया है। दोस्तों, समय की अपनी एक सीमा होती है और वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अब घड़ी की सुइयां इशारे कर रही है कि हम आपसे इस कार्यक्रम सुबह सवेरे से विदा लें। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा उपहार है। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में बताई गई बातें आपके जीवन में एक सार्थक बदलाव लाएंगी। हम फिर मिलेंगे अगली सुबह कुछ और नई बातों और मधुर गीतों के साथ इसी मोड़ पर, इसी तरंग पर। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम सुबह सवेरे। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस किया होगा। अब आप सुनिए आपातानी दैनिक न्यूज़ अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ आपके लिए।

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी सम्मानित और गण्यमान्य श्रोताओं को आपके इस आरजे का स्नेह पूर्वक और आधार भरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपातानी बोली में हमारा समाचार बुलेटिन। अब समय हो चला है हमारे सबसे चहेते और ज्ञानवर्धक सुबह के विशेष प्रस्तुति का, मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट। अरुणाचल के इस सुनहरी मौसम में जहां पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की पहली किरण हमारे जीरो वैली से लेकर पूरे प्रांत को एक अलौकिक धूप से साराबोर कर देती है, वहां एक नए दिन की शुरुआत के साथ हमें अपने ज्ञान और जागरूकता को भी एक नई उड़ान देना चाहिए। आज तारीख है 1 जून। हर दिन अपने साथ एक नया साल, एक नया इतिहास और एक नई कहानी लेकर आता है। हमारा ये धरती, हमारा ये देश और हमारे ये समाज हर दिन किसी न किसी ऐसी घटना का गवाह बनता है जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। आज के इस विशेष अंक में हम न केवल आज के दिन के उस महान इतिहास पर से पर्दा उठाएंगे जिसने देश और दुनिया की किस्मत बदली, बल्कि इसके साथ ही हम बात करेंगे आज के ताजा तरीन हालात और समाचारों पर भी जो सीधे जुड़े हैं हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश से। तो आइए ज्ञान, विज्ञान और संगीत के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही मधुर, शांत और प्रेरणादायक संगीतमय प्रस्तुति के साथ। सुनिए सुहाना गीत।

गीत के इस मधुर आनंद के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम में। श्रोता आइए सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में और देखते हैं कि आज के दिन यानी 1 जून को वैश्विक स्तर पर ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं घटित थी जिन्होंने पूरी दुनिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। श्रोताओं आज ही के दिन साल 1495 में दुनिया में पहली बार स्कॉच विस्की के उत्पादन का एक आधिकारिक यानी रिटन रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। स्कॉटलैंड के सरकारी दस्तावेजों में फ्रायर जॉन कॉर्क नाम के एक मोक्ष यात्री को एक्वा विटे यानी वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जॉन देने का जिक्र मिलता है। यह इस बात का सबूत है कि कैसे एक लोकल ड्रिंक आगे चलकर एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई। साल 1926 में आज ही के दिन हॉलीवुड की सबसे मशहूर और सुनहरी दौर की सबसे बड़ी आइकन मैरिलिन मोनरो का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ था। उनका असली नाम नॉर्मा जीन मोर्टेंसन था। उन्होंने न केवल सिनेमा की दुनिया को बदला बल्कि उनका फैशन और उनका चेहरा आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। उनका जीवन और उनकी कला आज भी फिल्म जगत के लिए एक मिसाल है। श्रोताओं बच्चे हो या बड़े सुपरमैन को कौन नहीं जानता। आज ही के दिन 1 जून 1938 को एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 में पहली बार सुपरमैन का किरदार दुनिया के सामने लाया गया था। इस एक किरदार ने पूरी कॉमिक बुक और सुपर हीरो इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जो आज हर बच्चे के बचपन का एक अहम हिस्सा है। मीडिया और समाचार की दुनिया में आज का दिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन था। 1 जून 1980 को दुनिया का सबसे पहला 24 घंटे चलने वाला टेलीविजन न्यूज नेटवर्क CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क शुरू हुआ था। इससे पहले लोग सिर्फ सुबह या शाम को एक निश्चित समय पर ही टीवी पर समाचार देख पाते थे, लेकिन CNN ने खबर पहुंचाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। वास्तव में श्रोताओं इतिहास हमें सिखाता है कि हर छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ी क्रांति बन सकती है। आइए ज्ञान की इस कड़ी को थोड़ा आराम देते हैं और रुक करते हैं संगीत के तरंगों की तरफ। सुनिए ये अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और हमारे खास कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। वैश्विक इतिहास के बाद आइए अब नजर डालते हैं हमारे अपने देश हमारे प्यारे भारत के इतिहास पर। आज के दिन हमारा मातृभूमि पर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं। श्रोताओं, भारत पर सालों तक राज करने वाले और हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक रूप से आज ही के दिन 1 जून 1874 को पूरी तरह से डिसॉल्व यानी समाप्त कर दिया गया था। हालांकि 1957 की क्रांति के बाद ही शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया है, लेकिन इस कंपनी को पूरी तरह खात्मा इसी दिन हुआ था। इंडियन रेलवे के इतिहास में आज ही के दिन बेहद सुनहरे हैं। 1 जून 1930 को देश की पहली लग्जूरियस और फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन की शुरुआत विक्टोरिया टर्मिनस से पुणे के बीच हुई थी। ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें

इलेक्ट्रिक इंजन था और इसने भारत में रफ्तार और आराम के एक नए दौर की शुरुआत की थी। देश के वैज्ञानिक विकास की बुनियाद आज ही के दिन रखी गई थी। 1 जून 1945 को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के प्रयासन से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। इस संस्थान ने भारत को परमाणु ऊर्जा और स्पेस रिसर्च में आत्मनिर्भर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि 1 जून 1972 को भारत सरकार ने स्पेस मिशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का उद्घाटन किया था और इसी दिन हमारी गर्व इसरो को इस डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया था, जिसके बाद से हमारे स्पेस मिशन ने चंद्रमा और मंगल तक का सफर तय किया। भारत का ये गौरवशाली इतिहास हमें याद दिलाता है कि हम एक महान देश की वासी है। आइए अब समाचार की तरफ बढ़ने से पहले सुनते हैं हमारे सुबह का तीसरा और आखिरी मधुर गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में। श्रोताओं, और अब रुख करते हैं स्टेट हेडलाइंस की तरफ। आइए नजर डालते हैं द अरुणाचल टाइम्स में छपी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर, जिन्हें हम पूरी गंभीरता से विस्तार में समझेंगे। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, नेरिस्ट फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस एज डायरेक्टर रिजाइन्स। राज्य के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थान नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नेरिस्ट में इस समय एक बड़ा प्रशासनिक संकट पैदा हो गया है। संस्थान के डायरेक्टर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कैंपस के प्रशासन और शैक्षणिक गतिविधियों में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जिसने फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों को चिंता में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से चल रहे आंतरिक मतभेदों और प्रशासनिक दबाव को इसका कारण बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और संस्थान का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इस प्रशासनिक सुनियाता को भरने के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बीजेपी बैक्स कांदू अमीट सीबीआई प्रॉप रिजेक्ट रेजिग्नेशन रूमर्स। राज्य की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑन गोइंग सीबीआई जांच के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर अपना पूरा विश्वास जताते हुए उनका भरपूर समर्थन किया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन सभी अफवाहों और अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी कि सीएम खांडू अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि ये अफवाहें पूरी तरह से बुनियाद है। सरकार बिल्कुल स्थिर है और विकास के कामों में जुटी हुई है। टीएमपी के अपोजिस डिमांड टू ब्रिंग मिसिंग्स इन अरुणाचल अंडर आईएलपी रिजीम। मिसिंग समुदाय को लेकर एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ताका मिसिंग पोरिन के बांग यानी टीएमपी के ने इस मांग का खड़े शब्दों में विरोध किया है, जिसमें मिसिंग समुदाय के लोगों को अरुणाचल प्रदेश के अंदर आईएलपी रिजीम के दायरे में लाने की बात कही जा रही थी। टीएमपी का तर्क है कि इस तरह का कोई भी कदम उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस मांग पर बेहद संवेदनशीलता और ध्यान से विचार करने की अपील की है ताकि क्षेत्रीय सौहार्द और शांति बने रहे। श्रोता, आज के दिन इतिहास का ज्ञान और आज के इन बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर समाचारों के साथ बेहद ही सतर्क रहा, लेकिन समय का पहिया निरंतर चलता रहता है और अब ये हमें आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। अब समय हो चला है आपके इस कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट से विदा लेने का। उम्मीद है आज का की ये जानकारी और ये मधुर संगीत आपकी सुबह को ज्ञानवर्धक और कुष्ठमा बनाने में सफल रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे अगले अंक में कुछ और नई बातों, इतिहास के पन्नों और ताजा खबरों के साथ। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन सुरुगुलगतागिन प्रोग्राम कोगी लायुनिया बेंतम के श्री राजीव राय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोकु अरासोनी मलंग बेंफा कुनाम गे सेनिंग गे दरुपोलुसो आगुसी मात्रियाजे गुदुक दुखु होला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देदगे गाइडलाइंस जिलिन कुनाम गे अरालो के काचिंग तमु सुनिया तकेला बेफालिन दुखु सो गामा सुम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिगे मंथली रेडियो प्रोग्राम लो मन की बात आकाशवाणी लो जबलग दुखुला बेफालिन दुखु मोदी ने मि केलुदा गे नीदरलैंड मोकुंगा तुर अंकर पीकुला दुकुला गामा रोताम को नाम नाका सोग program so gambang jablug jila rituku. Modi ni mi Tamil Nadu ke Niger Koyllo teacher Girija amage ringula angu school sgulu puriliki nga rigenam pele somka man ki bat program lo gambang jafa jila rigeni kuba. Moku so sipai soldiers dadaga lakhingba alu dikba marko barkin sagu kya khum tekela soga teacher angasi dige kunam sum alarong ba mung dokunela befalin doko Narendra Modi Stadium Ahmedabad lo IPL ge final cricket championship 2026 nga Gujarat Titans ngala defending champion Royal Challenger Bengaluru nga moyom likshula digani kubala me faduku so RCB nga Gujarat Titans nga yagani kubala me falinduku West Tripura no Lok Sabha MP bedine ok Tripura lokelo chief minister be risokuna Biplab Kumar Dev alulom galakhangba Tawang nga angker dokubela mayo tawang lo ng chipakula mifalinduku. MP ni tawang lo additional deputy commissioner Rinchin Leta la SP tawang tasi darang la deputy SP taso kato bulo karak sulari ganyo kubela mifaduku. Ok tawang police nga Guard of Honor Guka Rila Katam Gany Kubala Mifalin Duku. Union Minister of State for Road Transport and Highways Ajay Tamtala Anachal Pradesh Ge Transport Minister Ojing Tasing Banyimayo Konsa Loka Nitina New Luxury Bus Gari Miguni State Transport Services ga aralok ke jogra mola kula digani kubala me faduku. So ga APSTS Validitakri session nga dongbam dukula dukuba Union Minister ni me alulokin ga lekhang ba konsa nga tur angkarla dituku. High caliber bomb go Terminal Ballistic Research Laboratory ge melin kunam nguni Research and Development Organization DRDO nga muyo Haryana ge Panchkula District lo Ramgar Molo tes makala khula digani khubala befalin dukhu so ge tes sum Air Force ge senior officials de denga ge kunam nga kela befalin dukhu World No Tobacco Day nga Arunachal Pradesh ke Chief Minister Pema Khandu mayo sobam la digani khubala mifalin dukho sekene alunga Indian Army ge Gajraj Corps lo Sila Warriors ngala nga sobam ge la khula digani khubala mifadukho so alulu Civil Administration Tingbu ngaka Pre Medical Camp guni rigegen khubala mifadukho Arunachal Pradesh ke Deputy Chief Minister Chona Men Kiluda Roing lo Siang John to ge Din Dayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026 ge closing ceremony nga Dongbam gen khubela mifaduku so Din Dayal Upadhyaya ge organizes Organization ge discipline renam sangnam phele lo gamma nga tamsar kinu lakula so ge training program lo rige gen kubala me falen doku suru ge tagin gamba union bin tamsangka hebo

स्वागत है आप सबका फिर से फिजाओं में गुलती हुई संगीत की मितास और नई सुबह की सुनहरी शुरुआत। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी आदरणीय और प्रिय श्रोताओं को आपके इस आरजे का दिल से सलाम। तागिन बोली में अभी अभी आपने राज्य और देश दुनिया के अहम समाचार का विस्तार सुना। खबरों के इस सिलसिले के बाद अब हवाओं में संगीत का रंग खोलने का वक्त हो चला है। आइए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा और दिलों को छूने वाला संगीत में सफर सदाबहार। श्रोताओं, हमारा अरुणाचल प्रदेश प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जहां हर सुबह एक नए गीत की तरह शुरू होती है। पहाड़ों से टकराकर आती हुई ये ठंडी हवाएं घाटियों में बिखरी हुई धूप और चिड़ियाओं का ये मधुर चहचहाहट, ये सब मिलकर हमें बताता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और इस खूबसूरत जिंदगी में अगर संगीत का साथ मिल जाए तो हर लम्हा पूरे सुकून हो जाता है। पुराने जमाने का वो मिठास भरे सुनहरे गीत, उनके वो लफ्ज और वो धुन आज भी हमारे दिलों में वैसे ही ताजी है जैसे पहाड़ों पर खिले हुए ताजे फूल। आज के इस सफर में हम न केवल उन पुराने सुनहरे दौर के नगमे को गुनगुनाएंगे जो आपकी यादों को ताजा कर देंगे, बल्कि इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारी राजधानी ईटानगर और हमारे पूरे प्रांत के आज के मौसम के मिजाज पर भी, ताकि आपका पूरा दिन सुरक्षित और व्यवस्थित स्थित रहे। तो चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं संगीत के उस आंगन से जहां हर नगमा अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार है। पेश है हमारी आज की पहली संगीतमय सौगात, सुनिए और आनंद लीजिए।

गीत के इस मधुर आनंद के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सदाबहार के इस खूबसूरत सफर में। श्रोताओं, संगीत का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक बहुत ही जरूरी जानकारी का। हम सभी जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं या अपने दिन भर के कामों की योजना बनाते हैं तो आसमान के मिजाज को समझना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी राजधानी ईटानगर के आज के वेदर अपडेट्स पर। अगर बात करें हमारी दिलदार राजधानी ईटानगर की, तो ईटानगर में फिलहाल आसमान में धूप और बादल दोनों की आंख में चोली चल रही है, यानी कि मौसम पार्टली सनी बना हुआ है। अभी इस समय यहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, यानी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हवा में नमी की वजह से ये हमें 30 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। हवा की बात करें तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की दिशा से 2 mph की रफ्तार से हल्की हवाएं चल रही है और ह्यूमिडिटी यानी नमी का स्तर 84% पर है। सुबह के वक्त बारिश की संभावना सिर्फ 80% है, लेकिन हाँ, ईटानगर वालों थोड़ा संभल कर, दिन ढलने के साथ मौसम करवट बदलेगा। आज दिन में यहां थंडरस्टॉर्म यानी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है, जहां बारिश की उम्मीद 45% तक है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और रात होते होते मौसम मोस्टली क्लाउडी यानी बादल छाए रहेंगे और तापमान गिरते हुए 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। रात को बारिश की संभावना 20% रहेगी और हवाएं साउथ यानी दक्षिण दिशा से 3 mph की रफ्तार से चलेंगी। चलिए मौसम की इस ठंडक के साथ एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे पूरे अरुणाचल प्रदेश के मौसम के बारे में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अनुर एफएम और हमारा खास सेगमेंट संगीतमय कार्यक्रम सदाबहार। क्या सुहाना गीत था। मौसम जब ऐसा बदल रहा हो तो पुराने गीत सुनने का मजा ही कुछ और होता है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश के मौसम के हाल की, ताकि हमारे दूर दराज के जिलों में बैठे श्रोताओं भी अपनी तैयारी सही से कर ले। अगर हम समग्र रूप से पूरे राज्य पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में अभी इस समय मौसम मोस्टली सनी यानी धूप खिली हुई है और यहां का वर्तमान तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जो 29 डिग्री सेल्सियस जैसा फील हो रहा है। हवाएं साउथ यानी दक्षिण से बिल्कुल धीमी गति 1 एमपीएच की रफ्तार से चल रही है और नमी 80% दर्ज की गई है, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार हमारे राज्य के कई हिस्सों में आज का दिन के समय थंडरस्टॉर्म यानी तेज गरज चमक के साथ आंधी और बारिश आने की आशंका है। दिन के समय बारिश होने की संभावना 50% तक बनी हुई है। इसीलिए अगर आप खेती बाड़ी के काम से या किसी जरूरी सफर पर निकल रहे हैं तो छाते

और बरसाती के इंतजाम जरूर साथ रखें। आज राज्य का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। रात के वक्त मौसम थोड़ा नर्म होगा, हल्की बारिश का दौर चलता रहेगा जिसकी संभावना 40% है और तापमान गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। रात को हवाएं 3 MPH की रफ्तार से दक्षिण दिशा से चलेंगी। तो दोस्तों ये था मौसम का पूरा हाल। मौसम जैसा भी हो, आपके दिल का मौसम हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए और आपके दिल का मौसम को सदाबहार हमेशा रखना चाहिए।

0: श्रोता, उम्मीद है आज का ये संगीतमय सफर और हमारी राजधानी समेत पूरे अरुणाचल के मौसम की ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद मददगार रही होगी। वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, लेकिन आकाशवाणी से आपका और हमारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही अटूट रहेगा। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, इसीलिए आपके इस दोस्त को अब दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बारिश के इस मौसम में सुरक्षित रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों, ये तो सदाबहार उम्मीद है, इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होंगी। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार।

0: suryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है।

0: अनुपमिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
6: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

मोहन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली और शिलांग के समाचार के इस सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक नई सुबह के रंगों में डूबने का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी दिलदार और अजीज श्रोताओं को आपके इस दोस्त का स्नेहपूर्वक नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे खास, बेहद रोचक और आपकी अपनी सुबह के दुलारो प्रस्तुति में। जी हाँ, शुरू करते हैं हमारा अगला सफर जिसका नाम है हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

श्रोताओं, आज का ये अंक बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होने वाला है। आज मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए एक बेहद ही खास एजुकेशनल और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आया हूं। कुछ ऐसा ज्ञान और इतिहास जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी विस्तार से सुना होगा। आज तारीख है 1 जून 2026। हर दिन अपने साथ एक अनोखा पन्ना लेकर आता है और आज का पन्ना एक ऐसी ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में है जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड, एग्रीकल्चर और कल्चर को बदल कर रख दिया। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले दर्ज हुए स्कॉच विस्की के उस महान और गहरे इतिहास के बारे में जो सदियों पुराने और एक मोनेस्ट्री यानी आश्रम से शुरू होता है।

तो आइए अपनी जानकारी और ज्ञान के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं एक बेहद ही प्यारे और आपके दिल के करीब सुनहरे गीत के साथ। सुनिए ये सुहाना नगमा।

500 साल से भी ज्यादा पीछे साल 1495 में जब स्कॉटलैंड पर राजा जेम्स चार का शासन हुआ करता था। आज ही के दिन 1 जून 1495 को स्कॉटलैंड के राज दरबार के सरकारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, जिसे एक्सक्वेकर रोल्स ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जानता जाता था, एक विशेष एंट्री की गई थी। उस एंट्री में लिखा था कि राजा का के आदेश पर एक कैथलिक मॉन्क यानी भिक्षु जिनका नाम फ्रायर जॉन कोर था, उन्हें एक्वा विटे बनाने के लिए 8 बोल्स ऑफ मॉल्टेड बार्ली दिया जाए। श्रोता, यहाँ आपको थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड समझना होगा। एक्वा विटे एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का पानी। उस जमाने में लिक्विड डिस्टिलेशन को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। यही एक्वा विटे आगे चलकर स्कॉटिश गैलिक भाषा में युग बीता बना। सदियों के बदलाव, बोलचाल और गलत उच्चारण के कारण ये युग शब्द धीरे धीरे बदलते हुए विस्की बन गए। इसीलिए आज के दिन को पूरी दुनिया में स्कॉट विस्की या का ऑफिशियल जन्मदिन माना जाता है। चलिए इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी के अगले भाग पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं संगीत के आंगन की और सुनते हैं एक और बेहद मधुर गीत।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और हमारे खास एजुकेशनल और संगीतमय कार्यक्रम हेलो ईटानगर. आइए अब इस इतिहास के उस पैमाना को समझते हैं जो इस कहानी को और भी रोचक बनाता है. श्रोताओं, जिस भिक्षु फ्रायर जॉन कोर का जिक्र मैंने किया वो स्कॉटलैंड के फीफी रीजन में स्थित लिंडोर्स एबी नाम के एक महान आश्रम के साधु थे. उस जमाने में यानी मिडिल एजेस में डिस्टिलेशन यानी लिक्विड को उबालकर स्पिरिट बनाने का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आश्रमों के मंक्स और वैद्यों के पास होता है. वो लोग इसका इस्तेमाल नशा करने के लिए नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में पेट की बीमारियों को ठीक करने और स्कॉटलैंड की भयानक तन से बचने के लिए किया करते थे. अब एक बहुत बड़ा एजुकेशनल फैक्ट आपको बता दूं कि उस सरकारी दस्तावेज में दर्ज था 8 बोल्स ऑफ मॉल्ट. अगर हम इस पुराने स्कॉटिश मेजरमेंट को आज के मॉडर्न वेट्स में कन्वर्ट करें तो 8 बोल्स का मतलब होता है लगभग 500 से 600 किलोग्राम मॉल्टेड बार्ली. श्रोता, वो इतने अनाज से उस जमाने में लगभग 1500 बोटल्स हाई क्वालिटी स्पिरिट तैयार की जा सकती थी. इससे एक बहुत बड़ा प्रूफ मिलता है कि 1495 में जब ये रिकॉर्ड पहली बार लिखा गया तब तक स्कॉटलैंड में विस्की बनाना कोई नया प्रयोग नहीं था बल्कि ये एक बहुत बड़ा और वेल एस्टेब्लिश्ड स्कॉटिश इंडस्ट्री रूप ले चुका था जो आश्रमों के अंदर चलता था.

0: किंग जेम्स चार खुद साइंस और मेडिसिन के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग को सरकारी संरक्षण दिया। सोचिए, जो चीज सदियों से पहले एक आश्रम के छोटे से कमरे में दवाई के रूप में बनती थी, वो आज एक अरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है, जिस पर पूरे यूके की इकोनॉमी निर्भर करती है। आइए ज्ञान और एजुकेशनल जानकारी के इस सिलसिले के बाद अब फिर से वक्त हो चला है संगीत की तरंगों में बहने का। सुनिए ये हमारा अगला बेहद ही मजेदार गीत।
1: अदिति, बदतमीजी कर।

श्रोताओं, आज हेलो ईटानगर में हमने दिल्ली और शिलोंग के समाचार के साथ साथ दुनिया के एक बेहद ही दुर्लभ एजुकेशनल और दिलचस्प इतिहास को पूरी गहरे से जाना। उम्मीद है कि आज का ये ज्ञानवर्धक अंक आप सभी को बेहद पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में एक नया पन्ना जुड़ा होगा। ये था हेलो ईटानगर। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में ताजा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउंलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया

दोस्तों, नई दिल्ली से देश दुनिया के समाचारों के सिलसिला यहीं पर खत्म होता है और अब वक्त हो चला है उस दुनिया में कदम रखने का जहां चमक है, दमक है, थोड़ा ड्रामा है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी फिल्मी और दिलपेच श्रोताओं को आपके इस दोस्त का स्नेहपूर्वक नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे सबसे चटपटे, गर्मा गर्म और मजेदार शो में। जी हां, शुरू हो चला है आपका अपना फिल्मी कपशप।

दोस्तों, बी टाउन में इस समय ऐसी खबरें और धमाके हो रहे हैं जो सीधे सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पेज से निकलकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कांस्य 2026 की हॉट कंट्रोवर्सीज पर, बॉक्स ऑफिस पर चल रही नए स्टार्स की धूम पर और इंटरनेट पर वायरल हो रही कपल्स की ताजा फोटोज पर। तो चलिए इस फिल्मी गपशप की गर्मागर्म शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल ताजा और एनर्जेटिक ब्लॉकबस्टर ट्रैक के साथ। सुनिए ये पहला गीत।

वाह दोस्तों, इस गाने ने तो सुबह सुबह ही जोश भर दिया है। एक बार फिर स्वागत है आपका फिल्मी गपशप में। आइए सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स की, जहां लक्ष्य और अनन्या पांडे की नई रोम कॉम फिल्म चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के गानों और अनन्या लक्ष्य की केमिस्ट्री को लेकर बेहद रील्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पिछले 10 दिनों में 24 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ थिएटर्स में एक नई जून महीने की शुरुआत के साथ कई नई फिल्में जैसे बंदर और हे जवानी तो इश्क होना है इसी हफ्ते बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। इन फिल्मों में के ट्रेलर्स को लेकर यूट्यूब पर काफी हाइप बनी हुई है। चलिए इसी बॉक्स ऑफिस एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं हमारा दूसरा ट्रेंडिंग सॉन्ग।

स्वागत है आपका दोबारा दोस्तों। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सीज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक्स और उनके आउटफिट्स को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर हमारे दगदग गर्ल यानी माधुरी दीक्षित ने आकर ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। माधुरी ने ऐश्वर्या के बचाव करते हुए कहा कि हम उन्हें सिर्फ एक नंबर या किसी लुक तक सीमित नहीं कर सकते, उनका काम और उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। माधुरी की इस स्टेटमेंट के बाद फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। खैर, इन गर्म खबरों के बीच सुनते हैं हमारा तीसरा सुनहरा नगमा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और हमारा शो फिल्मी कपशप। दोस्तों, कल रात से पूरा इंटरनेट सिर्फ एक ही वीडियो को लेकर पागल हो रहा है। आईपीएल 2026 के ग्रैंड फिनाले में आरसीबी की शानदार जीत के बाद स्टेडियम से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किसेस दे रहे हैं। फैंस उन्हें अल्टीमेट पावर कपल कह रहे हैं, कहकर सोशल मीडिया पर उनकी रील्स बना रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फोटो डंप वायरल हो रहा है, न्यूली वेड्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का। दोनों इस समय जापान में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और टोक्यो के एनिमे अवार्ड्स से उनकी ब्लरी और क्यूट फोटोज ने इंस्टाग्राम पर आग लगाई हुई है। चलिए, इन क्यूट कपल्स के बारे में बात करने के बाद सुनते हैं हमारा अगला गीत।
1: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप। दोस्तों, इस समय थिएटर से एक बेहद हैरत अंगेज कंट्रोवर्सी सामने आई है। हॉलीवुड की सस्ती पर सुपरहिट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन इस समय भारत के थिएटर्स में धूम मचा रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जैसे सेलेब्स भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब जाने माने फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इस फिल्म को सीबीएफसी ने ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। फिर भी थिएटर्स के अंदर पैक्ड ऑडिटोरियम्स में बहुत सारे अंडरएज बच्चे बैठे हुए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। उन्होंने पीवीआर, इनॉक्स और बाकी मल्टीप्लेक्सेस पर सवाल उठाए हैं कि एज चेकिंग सही से क्यों नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर इंटरनेट पर काफी बहस छिड़ गई है। आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत, फिर बढ़ते हैं अगली खबर पर।

दोस्तों आने वाली फिल्मों की बात करें तो कियारा आडवाणी ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में अपनी आने वाली मूवी टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स और अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे मदरहुड और पोस्टमार्टम फेज में उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बनाया है और फैंस उनके इस इवॉल्व रूप को पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड है। साथ ही इंटरनेट पर डोन ट्री की चल रही तानातानी के बीच रणवीर सिंह बिल्कुल बेपरवाह दिखे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अर्सेनल के फुटबॉल मैच के हार पर रिएक्ट करते हुए पोस्ट किया, जिसके बाद फैंस उन्हें ट्रोलिंग से हटकर उनके स्पोर्ट्स फैनबॉय अवतार के लिए देख रहे हैं। चलिए सुनते हैं हमारा ये प्यारा

जिसे अब क्लैरिफाइड किया जा रहा है। वहीं अगर आप घर पर बैठकर इस हफ्ते कुछ देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर इस समय ऑफ कैंपस और कई नए शॉर्ट शोज ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस के कैंसिल कल्चर पर भी इंटरनेट पर इस समय काफी बड़े डिबेट चल रहा है। आइए सुनते हैं इस बहाने हमारा अगला

दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारी फिल्मी रैपिड फायर का, लेकिन इससे पहले संगीत की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर भी आज सुबह सामने आई है। हिंदी सिनेमा की सुनहरी दौर की मशहूर और मिठास भरी आवाज सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया है। पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए हमारे शो के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और इस संगीतमय सफर को थोड़ा और यादगार बनाते हैं हमारे आज के आखिरी जोशीला गीत के साथ, जिसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी।

दोस्तों आज फिल्मी गपशप में हमने सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पेजेस से लेकर बॉक्स ऑफिस और हॉट कंट्रोवर्सीज तक की सारी बिल्कुल ताजा खबरें आप तक पहुंचाई। उम्मीद है

0: आपको आज का ये बिल्कुल करंट और मसालेदार सफर पसंद आया होगा। अब गाड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आपके इस फिल्मी दोस्त को आपसे विदा लेनी होगी। कल फिर हाजिर होंगे इसी स्टेशन पर कुछ और नई गॉसिप्स और गर्मा गर्म खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमेशा फिल्मी रहिए और सुनते रहिए आपका अपना स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz। दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से। कहीं जाइए मत, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी

0: नई दिल्ली से देश और दुनिया के समाचारों का सिलसिला यहीं पर समापन होता है और अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे आखिरी बेहद खास और आप सभी के दिलों के सबसे करीब रहने वाले प्रस्तुति का। जी हां, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सबसे पसंदीदा और दुलारों शो रेडियो डिमांड में। आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर हाजिर है आपके खत, आपकी प्यारी फरमाइशों और ढेर सारे दुलार भरी बातें लेकर।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड एक ऐसा आंगन है जहां हम और आप सीधे दिलों से जुड़ते हैं। आपकी पसंद का गाना जब इस हवा में गुनगुनाता है तो हमारी इस सुबह की मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज भी हमारे पास हमारे प्यारे श्रोताओं के भेजे हुए खत और उनके बेहद खास फरमाइशें आ चुकी है, जिसमें दोस्ती, आधार और अपनों के लिए ढेर सारा स्नेह छुपा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के रिश्तों और संगीत के सुनहरे सफर का आगाज करते हैं हमारे आज की पहली फरमाइश के साथ। दोस्तों, हमारी जो आज की पहली फरमाइश आई है वो हमें भेजी है हमारी बेहद प्यारी श्रोता गुमे मई बागरा जी ने, और उन्होंने एक बेहद ही खूबसूरत नगमा सुनने की गुजारिश की है। गाना है मूवी लाल दुपट्टा मलमल का, से जिसके बोल है कुछ बात है तुम ही में, लेकिन इस गाने के साथ उन्होंने एक बेहद ही प्यारा और आधार भाव से बड़ा मैसेज भी भेजा है। गुमे मई बागरा जी ने ये खूबसूरत गीत डेडिकेट किया है एडवोकेट श्री केनबोम बागरा जी को। उन्होंने लिखा है कि वो श्री केनबोम बागरा जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने गुमे जी को फेसबुक पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया है, उनका हौसला बढ़ाया है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जब समाज में कोई एक दूसरे के हुनर को पहचानता है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे आगे बढ़ाता है तो रिश्तों की मिठास और सार्थकता और भी बढ़ जाती है। एडवोकेट श्री केनबोम बागरा जी, आपकी इस नेक और प्रेरणादायक कदम को हमारा भी सलाम, और गुमे मई बागरा जी, आपकी ये प्यारी सी भेंट और आधार भरा संदेश आपके अपनों तक जरूर पहुंच रहा होगा। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये बेहद ही सुहाना और सुनहरा गीत।

दोस्तों, इस गाने के एक एक लफ्ज में जो मिठास है वो सच में दिल को सुकून दे जाती है। उम्मीद है गुमे मई बागरा जी और एडवोकेट श्री केनबोम बागरा जी को अपनी फरमाइश सुनकर बेहद खुशी हुई होगी। संगीत का यही तो जादू है, ये दूरियां मिटा देता है और दिलों में स्नेह भर देता है। आप दोनों यूं ही हमेशा प्रगति के पाथ पर बढ़ते रहे और आपका ये स्नेह यूं ही बना रहे, आकाशवाणी पर हमारी यही कामना है। चलिए, संगीत के इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। हमारा अगला खत हमें मैसेज आया है हमारी दिलदार राजधानी ईटानगर से, और इसे भेजा है हमारे बेहद नियमित और अजीज श्रोता गोकर रिबाजी ने। गोकर रिबाजी, सबसे पहले तो ईटानगर से हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोता ही हमारे इस आवाज की सबसे बड़ी ताकत है। गोकर ने आज हमसे गुजारिश की है नवजोत आहूजा की एक बेहद ही खूबसूरत और दिलों को छूने वाला गाना सुनने की, जिसके बोल है खत। दोस्तों, आज के इस डिजिटल दौर में जब हम व्हाट्सएप और ईमेल्स के जरिए बातें करते हैं, तब पुराने जमाने के उस खत यानी चिट्ठियां की मिठास और हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। खत सिर्फ एक कागज नहीं होता, उसमें लिखे हुए शब्दों में दिलों के जज्बात और अपनों का इंतजार छुपा होता है। गोकर, आपने इस गाने को चुनकर हमें उस हसीन दौर की याद दिला दी है, जिसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आप हमेशा यूं ही संगीत से जुड़े रहे और हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आइए दोस्तों, गोकर रिबाजी की फरमाइश पर सुनते हैं नवजोत आहूजा का ये बेहद ही खूबसूरत गीत खत।

दोस्तों की अद्भुत आवाज और क्या बेहतरीन लिखावट थी इस गाने की। खत गाने ने सच में सुबह के इस मौसम को और भी सादा पर सुकून बना दिया है। गोकर उम्मीद है ईटानगर में बैठकर इस गाने को सुनते हुए आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आई होगी। हमारी आवाज को अपने घर और दिल में जगह देने के लिए आपका एक बार फिर से पूरी आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे पड़ोसी राज्य असम की तरफ। हमने हमेशा कहा है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और इसके सबूत है हमारा अगला खत। हमें मैसेज लिखा है गोलाघाट असम से हमारे बेहद ही खास और डेली लिसनर रोमेश पात्र जी और उनकी पूरी फैमिली ने। रोमेश जी, आपका और आपके पूरे परिवार का आकाशवाणी ईटानगर से रोज जुड़ने के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब आप जैसे श्रोता रोज हमारी आवाज सुनते हैं तो हमारा रिश्ता एक परिवार जैसा हो जाता है। रोमेश जी और उनकी फैमिली ने आज एक बेहद ही बेहतरीन और एवरग्रीन गीत की फरमाइश की है। आज मौसम बड़ा बेमान है और उन्होंने ये गाना अपने उन सभी प्यारे दोस्तों को डेडिकेट किया है जो हर मौसम में उनका साथ निभाते हैं। वाह, दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो रमेश जी और उनके दोस्तों के लिए पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये शानदार गीत।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, मौसम चाहे बेईमान हो या सुहाना, पर दोस्तों के का साथ हमेशा सच्चा होता है। रमेश पात्र जी और उनके सभी दोस्तों को उम्मीद है अपनी ये म्यूजिकल भेंट बेहद पसंद आई होगी। गोलाघाट असम की हमारे इस प्यारे परिवार को एक बार फिर से ढेर सारा प्यार। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे अहम और इमोशनल पड़ाव का। हमारे एक और डेली लिसनर है जोगेंद्र रोंगपी जी। जोगेंद्र जी ने आज हमें मैसेज लिखा है एक बेहद ही बड़े हुए दिल के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, संगीत जगत से कल एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सबसे मिठास भरी और महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी का कल 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जोगेंद्र रोंगपी जी ने उन्हें याद करते हुए उनका एक मशहूर गीत रिक्वेस्ट की है। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के करियर पर अगर हम नजर डालें तो उनका योगदान इंडियन म्यूजिक में अविस्मरणीय रहा है। 1950s और 60s के दौर में उन्होंने नौशाद, एस डी बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज इतनी पतली, नाजुक और मीठी थी कि कई बार आम श्रोता उनकी आवाज को लता मंगेशकर जी की आवाज समझ लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, आसामीज और कई क्षेत्रीय भाषाओं में गाने गाए। उनके इस महान कला के लिए उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

जोगेंद्र जी की फरमाइश पर आज सुमन जी की पाक याद में हम उनका वो सबसे आइकॉनिक और सुनहरा रोमांटिक डुएट बजाने जा रहे हैं जो उन्होंने लेट मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया था। मूवी जब जब फूल खिले का ये एवरग्रीन गाना आज भी हर दिल की धड़कन है। आइए श्रद्धांजलि स्वरूप सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, नाना करते प्यार तुम्हें से कर पेते।

दोस्तों, सुमन जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये गीत, उनकी ये मीठी आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। जोगेंद्र रोंगपे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस दुखद घड़ी में सुमन जी को इस खूबसूरत गाने के जरिए याद किया। सुमन कल्याणपुर जी को आकाशवाणी ईटानगर परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।

शुदा, वक्त हो चला है हमारी अगली फरमाइश का जो हमें भेजी है अमल बसुमतर जी ने। अमल जी ने बहुत ही मिठास बड़ा मैसेज लिखा है और उन्होंने एक ऐसा गाना चुना है जो संगीत के सुनहरे दौर की मिसाल है। अमल जी ने गुजारिश की है मुकेश जी और सारदा जी का गाया हुआ बेहद ही खूबसूरत गीत तुम्हारी नजरों में हमने देखा, और उन्होंने ये गाना किसी एक के लिए नहीं बल्कि आपने उन सभी जिगरी दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है जो उनके सुख दुख के साथी हैं। अमल जी, आपकी दोस्ती यूं ही बने रही और आपके दोस्तों तक आपका ये म्यूजिकल पैगाम जरूर पहुंचेगा। आइए सुनते हैं आज के ये आखिरी और बेहद प्यारे वाले।

दोस्तों, असम से ही हमारी एक और बेहद प्यारी और नियमित श्रोता है ज्योति सुरेंद्र जी, जो हेलम असम से रोज हमारे शो सुनती है। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। ज्योति ने आज की सुबह के लिए एक नई और बेहद ही प्यारी फरमाइश भेजी है। उन्होंने मूवी सावी से एक बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल ट्रैक चुना है,

दोस्तों हमारे अगले मैसेज जो भेजने वाले हैं वो भी हमारे रोज के लिसनर हैं। जी हाँ, बिमल बसुमतारी जी। बिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड में। बिमल जी ने आज संगीत के उस सुनहरे दौर से एक ऐसा गाना चुना है जिसे सुनकर मन एकदम खुश और आजाद पंछी की तरह महसूस करने लगता है। स्वरूप लता मंगेशकर जी का गाया हुआ यह सुनहरा गीत है पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, और बिमल जी ने ये गाना अपने सभी जिगर जान दोस्तों को डेडिकेट किया है। दोस्तों के साथ गुजारे वो आजाद पल सच में इस गाने जैसे ही होते हैं। तो बिमल जी और उनके सभी यारों के लिए सुनिए ये सुनहरा नगमा।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो निबान। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारे ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गई रतर और तकनीकी अभियंता गोलोक आलो। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, ये है आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, इससे पहले हमारी पहली प्रसारण सभा में आपके साथ बनी हुई थी आप सबका मन पसंदीदा आरजे याजू नादा। और अब घड़ी में बज चुके हैं 11:10, यानी अब से शुरू होगा मेरा सिलसिला, आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननाश का। और दोस्तों, आइए मैं आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए, आज इस सभा में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता तिमतिम। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द बकबक सेशन विद आरजे ननाश।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए दोस्तों, आइए हमारे इस सभा और इस संगीत में सफर को शुरू करते हैं फिल्मी लहर शो के साथ। और इस शो में पहला गाना दोस्तों फ्रॉम द फिल्म 10, आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गीत 10 बहाने करके ले गया दिल। ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों दीजिए पेश है ये बेहतरीन गाना फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर, जिसे गाया है जुबीन गर्ग ने. जी हाँ दोस्तों, ये है उस फिल्म का एक आइकॉनिक सॉन्ग या आली.

0: और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्में लहर। आई होप कि आप सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया है इस शो को। और अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अब आप सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Hello everyone and welcome.

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है. दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है. म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है. हमारे संवाददाता

0: बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar.

दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नॉन फिल्मी सॉन्ग्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों बॉलीवुड के गाने तो बढ़िया होते हैं, पर जो सुकून इन इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स में है उसकी बात ही कुछ अलग है। नो ड्रामा, नो फिल्टर्स, जस्ट प्योर एंड रॉ इमोशंस जो सीधा दिल पे नॉक करते हैं। तो रेडी हो जाओ अपनी इस सफर को और थोड़ा हसीन बनाने के लिए। कमिंग अप नेक्स्ट इज ए सॉन्ग जो आजकल मेरे लूप पर चल रहा है। टर्न अप द वॉल्यूम, डिफॉल्ट टू रिलैक्सेशन एंड एंजॉय, अनुभव बजाज विद लम्हे, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और इसके बाद दोस्तों अब फिर से आप सबके लिए अतीफ असलम की आवाज में ये बेहतरीन गीत पहली दफा ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम नॉन फिल्मी सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शो की ओर। अब आप सुनेंगे द शो गीत माला।

0: बहुत अच्छा.
1: Wow, brilliant, amazing, it's very nice.
0: Brilliant. ये म्यूजिक वीडियो तहलका मचाने का. एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं विक्रमादित्य.

0: चले दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त करते हैं हमारा ये सो गीत माला, और आप अब सुनेंगे कुछ पलों के लिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और हम फिर मिलेंगे हमारा कुछ बेहतरीन गीतों के कार्यक्रमों के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है।

0: अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Mae Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna.

0: ठीक है, आज गाना सुनना चाहता हूँ।
1: हाँ जी जरूर, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
0: आज गाना सुना दीजिए, दीवाना मूवी से। ऐसा
1: दीवाना मूवी से। ओके
0: गाना तो मैं सुर में गा के सुनाऊँ
1: जी
0: या?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गा के सुनाइए। हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है। तेरा दर्द से दिल आवाज़े रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, वो गाना सुना
1: क्या
0: दीजिए।
1: बात है, क्या बात है, आप गाते भी अच्छा हैं बापून जी। जी
0: नहीं
1: जी जी सुनकर अच्छा
0: थोड़ा थोड़ा
1: लगा।
0: मतलब ट्राई करता हूँ।
1: जी जी जी
0: गाने
1: जो
0: से मतलब दिल, गाने से मतलब दिल को थोड़ा सुकून मिलता है,
1: बिल्कुल
0: चैन
1: बिल्कुल बहुत सही
0: मिलता
1: कहा।
0: है।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: जरूर
1: बिल्कुल
0: जरूर।
1: सही कहा जी।
0: तो मेरा साथ श्रोता है, पहले मेरा बके सार जी के लिए,
1: थैंक यू। हाँ जी
0: और अनुप कुमार भट्टाचार्य है, सतवा भट्टाचार्य है, सिंधु दास जी है, और अभी जो श्रोता सुन रहे, सारे श्रोता के लिए।
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। जी जी
0: हाँ
1: तो
0: हाँ ठीक
1: बापूंदा,
0: है
1: कॉल
0: ठीक
1: करने के लिए
0: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते
0: हाँ
1: हैं आपके
0: ठीक है,
1: पसंद का
0: धन्यवाद,
1: गाना। ओके
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ, और मैं हूँ आपका आकाशवाणी का रेडियो श्रोता श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से।
0: जी श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं।
0: ओके।
1: और प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया, थोड़ा बदलाव आ रहा है प्रोग्राम में।
0: ओके थैंक यू।
1: पहले सोमवार को रिकॉर्डिंग करते थे, अब गुरुवार के दिन रिकॉर्डिंग करने लगे।
0: जी जी जी, सोमवार और गुरुवार दोनों दिन होते हैं आजकल रिकॉर्डिंग।
1: जी हाँ
0: जी जी जी, तो कहिए श्रीकांत जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज गाना सुनने का है मुझे, एक दूजे के लिए प्रेम का गाना सुनने का है, क्योंकि आकाशवाणी और हम श्रोता सब एक दूजे के साथ रहते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम बने एक दूजे के लिए ये गाना सुनने का।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये रिक्वेस्ट रखा है, फरमाइश रखा है, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे?
1: सर पहले तो आपके लिए डेलीकेट करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हम समय समय पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: समय पर
0: जी जी जी जी
1: पहले आपके लिए और आपके आकाशवाणी में जितने भी उद्घोषक हो आप सर के, उन सबके लिए
0: जी
1: और आकाशवाणी की में आकाशवाणी के जितने भी श्रोता ईटानगर में रहते हैं उनके लिए,
0: जी
1: और जो अनु कुमार भट्टाचार्य, सत्यपा भट्टाचार्य, अर्जुन प्रधान जी पक्कुरम घाटे, और उड़ीसा से चित्रसेन जी और मनोज कुमार, उनके लिए।
0: ओके, तो श्रीकांत जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपात डिस्ट्रिक्ट कचर आसाम से। कुछ नाम दिल से मिटाए नहीं जाते, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते। मुलासा तो ये मेरे दोस्ती की सिरा मिटाया ना जाती।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत देवजीत दा। और कहिए आपके वहाँ पर मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो अभी तो अच्छा है, अभी तो बारिश नहीं।
0: अच्छा,
1: सुबह 7-8 बजे बारिश हुई बहुत।
0: ओके।
1: तो आपका वहाँ पर मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, बढ़िया है मौसम, बहुत ही बढ़िया है जी। तो कहिए, बढ़िया मौसम में आप कौन सा बढ़िया सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज तो मैं बारिश का तो मौसम चल रहा है तो आपका वहाँ पर तो मैं एक बारिश का गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी
0: ओके।
1: और गाने का बोल है, गाना गाया है कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति ने।
0: ओके जी।
1: और ये गाना भी है, रिम जिम रूम जुम बिगी बिगी ऋतु में तुम हम तुम।
0: वाह वाह वाह, बारिश के मौसम में बारिश का बढ़िया सा गाना। और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा पिताजी सुनेगा जितेन कुमार दास और माताजी है शिल्पारानी दास, बड़े भैया है जयजीत दास और आपके लिए सर गाना भी।
0: थैंक
1: और
0: यू
1: ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: जी जी
1: पहले
0: जरूर।
1: मेरा आसाम से है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्या और है दीदी है छोटेबा भट्टाचार्य जी और है रामतो बाई और बापन दादा है और हैलाकंदी से हैलाकंदी चंडीपुर से मेरे बहन लवली दास और बबली दास और मेरा दादा है राजा मालाकार और मेरा दादा है जवाहरलाल बर्मन और है प्रेमोजी दादा। और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते हैं सारे श्रोताओं को गाना डेडिकेट
0: सारे
1: करूंगा।
0: श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो देवजीत दा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं, 1942 ए लव स्टोरी
1: आपके
0: फिल्म
1: साथ
0: से।
1: बातें करके बहुत अच्छा लगा।
0: जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर। नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मैं कथर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल बर्मन।
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ
0: कैसे
1: सर,
0: हो?
1: थैंक यू सर।
0: कैसे हो आप, सुनाइए।
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे
0: ओके
1: हैं?
0: जी, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मैं मजे में हूँ। और अभी फिलहाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, घर से या फिर कहीं बाहर से?
1: नहीं सर, मैं अभी तो मैं सिलचर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: जी हाँ, मैं सिलचर में 2 दिन से सिलचर में आया है
0: ओके, कुछ काम से?
1: तो। हाँ जी हाँ,
0: ओके ओके
1: कुछ काम
0: ओके,
1: से आया हूँ
0: अच्छा।
1: सिलचर।
0: और आपका घर कहाँ पे है?
1: घर तो सर सिलचर से 7-8 किलोमीटर थोड़ा
0: अच्छा,
1: दूर में है।
0: ओके, इतना दूर तो नहीं है ना? जी जी
1: जी
0: जी
1: हाँ
0: ओके, बढ़िया बढ़िया। तो काम कर लीजिए और काम के साथ साथ हमारा हेलो फरमाइश भी सुनिए।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: कहिए, आज कौन सा फिल्म गीत आपको सुनाए?
1: सर, मुझे आज सुना दीजिए, वो 1982 में रिलीज हुआ डिस्को डेंसर।
0: ओ वाह वाह, क्या
1: जी
0: बात है
1: हाँ,
0: जी।
1: महान गीतकार अंजन जी ने लिखा है वो गाना, और महान सुरकार बाप्पी लहरी जी ने उस सुर में गाना सजाया है।
0: जी।
1: सूर्या सवदेगर और उषा मंगेशकर के जुगल सर में। उस पिक्चर में अभिनेता राजेश खन्ना के साथ मास्टर छोटू ने अभिनय किया है, और वो गाना है गोरो कीना कालोन की दुनिया है दिल वालों की।
0: दुनिया है दिल वालों की, क्या बात
1: जी
0: है।
1: हाँ जी
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: ये गाना मुझे बहुत याद है, क्योंकि 1982 में हम सब मिल के सर वो पिकनिक में गया था,
0: ओके। हाँ
1: और वो पिकनिक पे वो गाना वो माइक पर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में
0: अच्छा,
1: वो गाना हमेशा बजा था सर, और
0: ओ क्या
1: साथ में
0: बात
1: तो
0: है,
1: हम सब ने डांस किया है।
0: अच्छा। ओके जी जी
1: और
0: जी
1: खाना बना भी बहुत मजेदार हुआ और
0: ओके
1: बहुत अच्छा लगा है,
0: जी, बहुत ही बढ़िया जमाना था ना वो, पुराना
1: और
0: दिन।
1: बहुत दूर में गया सर, वो एक पहाड़ी झरना पे हम सब गया है वो
0: पिकनिक
1: पिकनिक पे,
0: मनाने,
1: तो गाना सुनने से वो दिन याद आता है।
0: ओहो क्या बात है
1: जी हाँ सर, जी हाँ
0: जी।
1: जी हाँ,
0: ओके
1: तो
0: जरूर
1: बहुत अच्छा
0: सुनाएंगे।
1: लगा क्योंकि आज मिल गया हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी जरूर
1: और मेरा
0: मिलेंगे
1: मन के बात आपको साथ शेयर करने को वो मिल गया तो
0: जी।
1: बहुत
0: बहुत ही
1: अच्छा
0: अच्छा लगता
1: लगता
0: है
1: है।
0: जवाहरलाल जी, जब भी आप अपने बारे में पुरानी यादें शेयर करते हैं,
1: जी
0: बहुत ही
1: हाँ
0: अच्छा लगा। हमें भी अपने पुराना जमाना का ये दिन याद आ जाता है जी। तो किन लोगों को आप डेडिकेट करना
1: सर,
0: चाहेंगे इस गीत
1: डेडिकेट
0: को?
1: तो करना चाहता हूँ सर, पहले आपकी
0: थैंक यू जी।
1: और प्रेमोजीत भाई ही, और आशुतोष बाबू ही, और अविनाश भाई ही, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते
1: जी
0: हैं। तो
1: हाँ
0: जवाहरलाल जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत
1: हाँ हाँ
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आर्मी महोदय, शादर नमस्कार।
0: नमस्कार, आपको भी हमारी ओर से। कहिए कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: मैं धन्यवाद धन्यवाद। मैं
0: जी
1: आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी वाग्रा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर से।
0: क्या
1: मानवर आप कैसे हैं?
0: क्या बात है शारदा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही बढ़िया हैं और हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है रिमझिम
1: अरे
0: ठंडी।
1: वाह,
0: जी जी जी
1: बधाई हो
0: बहुत बहुत
1: आप
0: धन्यवाद।
1: तो आनंद से हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान दिनकर भास्कर एकदम अपने प्रचंड किरणों की बरसात कर रहे हैं। गर्म गर्म हवाएं हैं, चिलचिलाती हुई धूप है और ऐसे वातावरण में बस मैं घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे मथुरा वृंदावन रेड अलर्ट जारी है, मतलब लू चलने की।
0: लू चलने के लिए, बाप रे,
1: जी
0: ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है। कृपया अपने आपको बचाए रखे, लू से घर से बाहर ना निकले। जी
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: जी
1: निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और इसमें अमल भी कर रहा हूँ।
0: जी
1: घर के
0: जी
1: अंदर रहता हूँ, बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक है
0: क्या बात है।
1: और मौसमी फलों का खूब सेवन कर रहा हूँ,
0: ओके
1: ठंडे पानी का सेवन करता हूँ, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, नॉर्मल जो सामान्य पानी होता है
0: जी
1: उसी
0: जी
1: का
0: जी
1: उपयोग करता हूँ।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से हम अपने आप को गर्मी से, लू से बचा के रख सकते हैं।
1: जी
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: तो कहिए शारदा जी, आज कौन सा फिल्म गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ससुराल। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँ, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर पहुँचाना हेतु।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और डेडिकेशन,
1: सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय वागरा साहब को याद करता हूँ
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद
1: नूरी मैम को भी इस गीत में शामिल करता हूँ
0: जी।
1: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं शर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं और साथ में देवी शंकर शुक्ल हैं, विद्या रत्न शर्मा जी हैं और विजय कुमार पांडे हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत झूमता हुआ आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना ससुराल फिल्म से।
1: जी हृदय से धन्यवाद, सादर नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर, हम धेमाजी असम जुनून मिसा के कपड़े से बिमोल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमोल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: जी सर, हम ठीक है
0: बढ़िया
1: अभी
0: है।
1: सर।
0: ओके, अभी दुकान में है आप?
1: जी सर, अभी थोड़ा खेत में हाल मार के आया हुआ है, अभी खाना पीना खाया, अभी जाएगा दुकान
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके। मौसम कैसा है अभी, बारिश है या
1: मौसम
0: धूप?
1: सर अभी तो बारिश भी नहीं आया है, डूब भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा
0: ओ
1: ठंडा अच्छा है मौसम।
0: अच्छा, ओके। और हाल मारने के बाद कौन सा फसल, कौन सा बीज आप बोएंगे, क्या लगाएंगे
1: ये
0: खेती
1: धान
0: में?
1: का खेती करेगा सर
0: अच्छा,
1: हम लोग।
0: धान का ही खेती ना। ओके,
1: जी
0: और
1: जी
0: सब्जी वगैरह होता है आपके खेती में?
1: सब्जी वगैरह तो होता है सर, करने से तो होता है।
0: अच्छा, ओ लेकिन आप ज्यादातर
1: जी
0: तो धान का खेती करते हैं।
1: सर, हम मेरा इतना
0: ओके,
1: टाइम नहीं है ना, धान का खेती करके फिर दुकान में जाना पड़ता है,
0: ओ
1: इसलिए
0: जी
1: दूसरा
0: जी
1: खेती नहीं
0: जी
1: करते हम ज्यादा।
0: ओके, डबल काम हो जाता है ना।
1: जी सर।
0: ओके ओके, जी। तो कहिए, अभी फ्रेश होके कौन सा फिल्म का गाना आपको सुनाए?
1: जी सर, हमको करण उजन का ये गाना सुनने से होगा, जय माँ काली, ये गाना अच्छा
0: ओके जी, हाँ जरूर सुनाएंगे।
1: लगता है सुन के।
0: ओके जी। और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम लोग का मेरा दोस्त लोग के लिए डिलीट करना चाहता हूँ। हम लोग का अमोल बसुमतारी, फाइकोन मुंडा है, अंजलि बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, रमेश पत्र, सुखविला मेहता, रमेश प्रजापति, अंशुला बसुमतारी, पूरण वर्मा, अविनाश, दुर्गेश्वर नवनपुरी, हितेंद्र दास, जोगेंद्र रंगपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंगपी, भगवान सिंह, राकेश, और आपको भी सर, सबके लिए डिलीट करना चाहता हूँ सर हम।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो बिमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी सर, बहुत
0: जी।
1: नगर।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, ग्राम आवास जिला यमुई बिहार।
0: ओके अनवर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार आपके यहाँ मेरी कॉल लगी। मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ।
0: जी जी जी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: तारों की ईदों से हमें क्या वास्ता गालिब, हमारा जो चांद दिख जाए हमारी ईद हो जाए। इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो, निगाहें जिन टकरा जाए हमारी ईद हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है अनवर जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की। और सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने पहली बार हमें कॉल किया और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: बिल्कुल
0: जी जी जी जी। और ईद की क्या तैयारी है?
1: ईद की तैयारी है यही, सुबह सुबह उठे, नहाया धोया, नए नए कपड़े पहना, कुर्ता पजामा, ईदगाह गए, नमाज पढ़ी, वहाँ लोगों से मिले जुले
0: जी,
1: सब रिश्तेदारों के यहाँ गए। अभी मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे याद आ गया कि आज ईटानगर में रिकॉर्डिंग है।
0: अरे वाह, करने बैठ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया।
1: रेडियो से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ, हर जगह हर वक्त
0: जी
1: रेडियो की याद आती रहती है। मैं 12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ, 1988 से।
0: अरे वाह।
1: और रेडियो इस तरह से मेरे लिए समझिए खुली खुलाई किताब है।
0: जी।
1: गीत भी है, संगीत भी है, गजल भी है, फरमाइश भी है, इसमें आपको गाने भी हैं, मकालात भी हैं, मजामीन भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी बातें, पुराने ख्याल, रेडियो की पुरानी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरह हमारा आकाशवाणी के फलता फूलता रहे परवान तौर पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुनने वाले कभी भी कम ना हो।
0: जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अनवर जी। तो कहिए आज इस पाक अवसर पर हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाएं?
1: मिल गया मुझे बहाना तेरी जीत का, ऐसी खुशी लेके आया चांद ईद का।
0: ओके
1: और मैं अपने दोस्तों का नाम ले लूं अगर आप इजाजत दें।
0: जी जी जरूर जरूर। हाँ जी।
1: हसीना मंसूर बेगम, नजवान शाही, पूनम रजनी, बसंती ममता, रिजवाना शबनम, मोनिका, रिंकी तिवारी, तरन्नी जाल, खुशी खबारा, प्रेम खुशी, अफरत सैयद, रीजा मंसारी, रानी अर्चना, पूजा, निशा, नीता राघव, उदिता, सुजीता, नीना शर्मा, शाना शर्मा, सितारा बेगम, नसीम बेगम, शमा पलिन, मोहब्बत बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, गायत्री खालदा, नाजी हसन, पीटी जी, साजिबाना, गणेश, अनु।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने अपने दोस्तों का नाम लिया इसी से पता चलता है कि आप रेडियो के कितने दीवाने हैं।
1: शुक्रिया।
0: जी जी जी। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: धन्यवाद
0: कहिए
1: सर जी।
0: जी, और कहिए क्या कर रहे हैं अभी।
1: बस बिल्कुल सर जी, दुकान जाने

0: सिंगिंग करे, गाना बजाए, ऐसा
1: नहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: सर जी, हम समझते हैं
0: जी
1: जैसे कि
0: जी
1: जो वीडियोग्राफी करने वाले रहते हैं वो
0: हाँ
1: भी
0: जी हाँ
1: वीडियो के अंदर
0: जी
1: भी गाना ऐड करते हैं, तो
0: जी
1: ऐसा आपका भी बहुत उसके अंदर योगदान रहता है, इसलिए
0: जी
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद।
0: जी बहुत ही धन्यवाद। तो कहिए, सैलून जाने से पहले कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनना सर, ये हाथ की सफाई फिल्म का गीत है, इसमें गीत है वादा कर ले साजना तेरे बिना, ऐसा
0: ओ
1: गीत है
0: वाह वाह वाह, जी जरूर सुनाएंगे। और
1: जी
0: किन
1: सर
0: लोगों को
1: जी।
0: सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं, सुनील झा जी हैं, राम बाबू मालवी जी भोपाल से, योगेश जी हैं, गौतम जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और ये सभी हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के लिए रहेगा, और आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी यह गीत रहेगा कि वादा कर ले साजना कि तेरे बिना हम न रहे।
0: तो लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना हाथ की सफाई फिल्म से।

0: हल्लो फरमाइश।
1: तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। उसके बाद शुरू होगा हमारा संगीत में सफर हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
2: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील

0: 94 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month. 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women, competed in the tournament held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Sir Firozi. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट

0: और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज

0: सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
1: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूँ।

0: करता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। और अब आप सुनेंगे द शो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, हिट्स ऑफ 90s।

भीग गए वो दिन पर यादें आज भी खड़ी है। 90s की हर धुन में मोहब्बत की एक नई लड़ी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप मेरे साथ लौट आए हैं उस दौर में जहाँ म्यूजिक का मतलब होता था प्योर मैजिक। वेलकम टू द शो हिट्स ऑफ 90s। वो वॉकमैन का जमाना, गानों को रिवाइंड कर करके सुनना और हर लिरिक्स को डायरी में लिखना, 90s का अपना अलग ही स्वैग था। आज की इस झंझट भरी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और वापस चलते हैं उसी सुकून भरी गली में। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि अपकमिंग नेक्स्ट इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस जो आपको आपके पहले प्यार की याद जरूर दिलाएगा। टर्न अप द वॉल्यूम एंड गेट रेडी टू ग्रूव विद कुमार सानू। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गाना इस शो में, चांद सितारे, फ्रॉम द फिल्म कहो ना प्यार है, जिसे गाया है कुमार सानू ने, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिट साउथ 90s। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके तुरंत बाद मिसमी कमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद ताई कामती श्रोता।

0: का समाचार। हम फिर मिलेंगे।
1: This is Hagiani. Today's headlines are: President Draupadi Murmu appoints 5 new judges to the Supreme Court, taking the apex court's working strength to 37, including the Chief Justice of India. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion, and new opportunities for growth. Notification for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states to be issued today. One seat each in Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Mizoram will go to polls. West Bengal cabinet expands with the induction of 35 new ministers at the swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata today. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan launched the nationwide Khet Bachao Abhiyan. The month-long campaign will continue till 30th of June. India and Bangladesh to hold biannual Director General level border talks on border fencing, illegal migration and security issues in New Delhi from June 8th to 11th. GST collections rise 3.2% to over 1.94 lakh crore in May. IIT Roorkee announces results of the joint entrance examination advance exam. 56,880 candidates qualify the exam. Commercial LPG cylinder prices hiked across 4 major cities of India. The latest increase came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia amid conflict between US and Iran. Renowned singer Suman Kalyanpur passes away at 89. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: अच्छा आकाशवाणी अतानग दबसो यशी लतरिक मोगा बाजिक सम के रोइचो तुलंकिन कमाला कुम सोंग क्राइमिक सर का गया छे रतुल्यो कलाता हूं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का कलेन कतान जजस वन सुप्रीम कोर्ट कांग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवटने का अपॉइंट का था करा दार ला रांचान लाइवन लो वरक जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का भी सोशल मीडिया हलकाती में था पुटा दार ला पीएम स्वनिधि स्कीम पोला वंजा दोंगाले का लॉकडाउन समग्रा वन फी प्रधानमंत्री का ग्रीटिंग्स में फीता कर अंदाज ला वरा अंजान गुंगल के वरा कथा उठा का अंजान स्कीम हल का शोमो स्ट्रीट वेंडर्स चाउंटो ब्लॉन्ग ग्रेहिशन ने शाउटिक विद्वंसन ने तेज लाभ समझ अंदाज ला था उठा कर अंदाज ला वरा करा अंजान स्कीम अन गुंगल के वन शोमो स्ट्रीट वेंडर्स चाउंटो वंसन ने पाए कंदाए सपोर्ट भी मतो दा दोम ता वरा करा अंजान गुंगल के वन शोमो शाउटिक विद चाउंटो वंसन जी पुई भी पाए कंदाए सपोर्ट भी मतो वरा तो दिन मोले का अंजान लॉकडाउन अन गुंगल के वन क्रोल मो वरा करा लक्ष्य मुकुनिन बायन तो तुम अपनी था पहले था उसका तंत्र ला वरा राज्यसभा इलेक्शन फॉर नोटिफिकेशन मंजावन क्या मुकुन मंजावन तो क्या मोस्टेड काम तो आल नोटिफिकेशन इश्यू कर मतलब तंत्र ला वरा अंचान गुंगले वन कंप्लीट मंजावन आंध्र प्रदेश वरा गुजरात वरा कर्नाटका वरा सब सिट्स मंजावन राजस्थान मध्य प्रदेश वरा करा किन सिट्स मंजाल खन वरा करा कुमो सीट मंजा मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नॉमिनेशन फाइल मंजा दोंगाली का यशीला तारीख ग्रन मत का चत मना दार ला वरा करा इलेक्शन मंजा उन तारीख क्या मोंग ग्रन यशीला लाया समांग वरा वन गांसो कोंटिंग में समांग न दार ला वरंगिन सम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन समलात के अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर लावन फी लावपिंग में समलात फी मंजावन कुंसा हेलगाइन वे फाइल न दार ला वरा अंचान लिख वन यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट बोला का रेलवे अजय तातम मन थोशन का दंदार ला सेलिब्रेशन अनुकूल मन सब का सब एपीएसटी बस मजा तिराप डिस्ट्रिक्ट कंग फोर्थ का दंदार ला वर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामेन का गए ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम मन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स क्लास के अप मोरा क्लास के अप मुकनिन सेशन लाउहिंग तलमोक तलमोक लेन तलमोक ताम मजा मल्टी पर्पस कल्चरल सेंटर नाम सायो का था कर दंदार ला मुसो का शोमो कहीं का था सा चंग डॉम संच पूरी डिशियम का कंग्रेजुलेट का था करन दार ला मन सब का था था का तो क्लेन स्टूडेंट्स वन जावन टाइ अ होम कम्युनिटी सन का वन यूपीएससी कोचिंग वन फ्री तक का समांग दार था करन दार ला नम साय ले वरा आईपीएल क्रिकेट वन गो हो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सन का गुजरात टाइटन्स से तेज हवा रंधार ला विकेट क्लेम

का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद लेक गुजरात टाइटन सन का वन ओयेमो वपिंगमो प्लेन वंजावन रन टारगेट चौथा वन दादला ओवर तलमो लेक पूरा करा रॉयल चैलेंजर्स सन का वन बारम से पे था वन दादला ओवर कैप मोग पे था वन दादला और विराट कोहली वन प्लेयर ऑफ द मैच थान था वन दादला और इंडिया सन का वन इंडिया रक माइनर सन का सेमीफाइनल वन जो एस एफ एफ वुमेन्स चैंपियनशिप लोहिंग किंग तलमुक्ता मुंजावन बांग्लादेश भी गोल सम का पे था वन दादला पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगाव गोवाले गाइन वे और अंजान गुंगलिक वन प्यारी जारा वरा करा लेंडा कॉम वरा करा मलाविका पी वंशन का स्कोर हा का था वन दादला विंच पुई का रातो शम लेरा वन भूटान ना खिले क्रमने दादला सेमीफाइनल रातो तंजा गया छी।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताइकांती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे द सो बॉलीवुड अपडेट्स।

हेलो ईटानगर, दिस इज योर दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बीता उनकी कुछ चमकते दमकते दुनिया से कुछ देर सारी मसालेदार और ताजा तरीन खबरें। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द शो बॉलीवुड अपडेट्स।

चले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबकी फेवरेट बीताउन भाभी यानी अनुष्का शर्मा की। कल रात पूरे देश की तरह अनुष्का भाभी भी अहमदाबाद के स्टेडियम में थी, और जैसे ही आरसीबी ने अपनी बैक टू बैक दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीती, बॉस अनुष्का रिएक्शन वॉज प्योर गोल्ड। वो फ्लाइंग किसेस, वो क्रेजी चीयरिंग, विराट कोहली और अनुष्का के फोटोज आज इंटरनेट पे आग लगा रही है। विराट ने एक टी शर्ट भी पहनी थी जिस पर लिखा था One felt nice, but we did it twice. Couple goals ho to aise.

और अब आते हैं उस न्यूज पर जिसने कल से सबको टेंशन में डाल रखा था। रूमर्स थी कि अपकमिंग स्पाई थ्रिलर अल्फा के सेट पर बॉबी डियल और आलिया भट्ट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, पर हमारे बॉबी ने आज सुबह ही एक धमाकेदार इंटरव्यू में सारे रूमर्स को धुआं कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो खुद हैरान हूं ये सुनकर, आलिया और रणबीर तो मेरे फेवरेट्स हैं। सो चिल मारो गाइस, लॉर्ड बॉबी और आलिया के बीच सब कुछ ठीक है, सब सेट है और फिल्म का एक्शन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और हाँ दोस्तों, जून शुरू हो चुका है और इस महीने बॉक्स ऑफिस पर तबाही आने वाली है। पहला धमाका होने वाला है फिल्म वेलकम टू द जंगल से। इसका आइकॉनिक सॉन्ग ऊंचा लंबा कद का

रीमेक रिलीज हो चुका है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ इस बार दिशा पटानी थुमके लगा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैटरीना कैफ वाला चार्म नहीं है, पर बॉस अक्षय कुमार की एनर्जी 19 साल बाद भी वो 20 साल वाले लड़के जैसे है। इसके अलावा वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है, और इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा भी इसी महीने थिएटर्स पे आने वाली है।

और दोस्तों दोस्तों दोस्तों जाते जाते बात करते हैं थोड़ी नॉस्टैल्जिया की। हम सबके फेवरेट इमरान हाशमी के पब्लिस्ट ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इमरान का जो आइकॉनिक सीरियल किसर वाला इमेज था वो एक्चुअली एक प्लेन पीआर कैंपेन था। इमेजिन, और यहाँ हम लोग तो सोते जागते उन्हीं के गाने गुनगुनाते थे। वेल, प्यार हो या रियलिटी, इमरान के गाने आज भी हमारे दिल के सबसे करीब है। ऑन अ सैड नोट, कल हमने अपनी एक बहुत पुरानी और बेहतरीन सिंगर सुमन कल्याणपुर जी को खो दिया। सी पास्ड अवे एट 89। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की सारी चटपटी और बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर इसी जगह, थोड़ी और हीरोपंती और थोड़े और गपशप के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो चलिए दोस्तों, आइए हम सुनाते हैं आपको इस शो में एक बेहतरीन गाना उदित नारायण और चित्रा की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म कोई मिल गया। इस सॉन्ग का नाम भी है दोस्तों वैसे कोई मिल गया। तो आइए सुनिए, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और बड़े अफसोस के साथ दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ हमें समाप्त करना होगा हमारा ये सो बॉलीवुड अपडेट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वांछू सोथाओ का समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर पे।

0: सिंह राहुल कहाँ है? राहुल
1: जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिं

0: तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा ये कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। यहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे इदुनिस में श्रोताओं का समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम फिर मिलेंगे हमारा गीतों का संगीतों का सिलसिला को लेकर।
1: वांछू श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईद उमिस में कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची एलामे आसोलिनी एतानिची ईद उमिस में आहला कीजिए दरगलंबो सीजे आयोग आजुगापा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में सुप्रीम कोर्ट में मांगा जज में आधा छापने एचो सुप्रीम कोर्ट में है असुरु जज जिगा बदा ने यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल में ला होगा सी जी आई लाभु गए असुरु कासो जज अलम्बो जिगा सुप्रीम कोर्ट में असुरु युवा एवदला ने सेंटर में लिबाचे लापू ऑर्डिनेंस आजो आयोग बचिदा लगा पी एम स्वनिधि खबा एतान्यो ताहुनिबा महो आइसक्रीम में अतिकाची इचुआ अमाया तांधो अरबदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ला होगा लिबचा ताहुनुमा आइसक्रीम कोकोमा ने कोरोगेतो ने हुलुनी लाख पाऊ इचुआ अमाया मोलम्रो तांगा ला होगा इंडिया मचे हूँ स्टेट मचे आने हो कापी राज्यसभा सीट इलेक्शन के बने ओना नोटिफिकेशन आजो आयो वही बा आमा आंध्र प्रदेश गुजरात ने कर्नाटका माचे सीट का पिता राजस्थान ने मध्य प्रदेश माचे सीट का सोता झारखंड माचे कानी मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश ने मिजोरम माचे सीट खेगता खेगामा हो आ इलेक्शन मा देवदा हुआ मैम एता ने अब एचला पुची हियु माचे निलीपा आमू हाथी जिगाओ महो बोर्ड है एचला पुची जिहू माचिनी अखग ने आ माचिनी बोर्ड ठुगावदा ला होगा बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट खुंसा आदिको ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस APSTS खागेबा मंगारू नुबा इनी एनांदोगा माचिनी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट दो ने हाईवेस लेबा स्टेट मिनिस्टर अजय टमटा में करो हेता साहेबा ने तिराप डिस्ट्रिक्ट के बने APSTS बस में कांसो आसारा के गने आहेगेबादा आ होगा APSTS में लिबाचा राजा मंगा लिबा अरुणाचल प्रदेश आदिकाची इमुदो ने डेवलपमेंट जो तांदो हरवाबदा ने यूनियन मिनिस्टर में लगा ने सेंटर में NHI DCL आतुचा ने अरुणाचल प्रदेश पाची आयचे प्रभा जो त्यहाँ पुगावदा लगबदा आओगा अतिका मा जू ना आहितुमु प्रकांदो गवर्नमेंट में आज तेगा बचातु गने आज आहितु में प्राने जू ना आहितु जी ना ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में बुनी नाम साई माचे मल्टीपर्पज सेंट्रल हॉल माने लिपचा क्लास हूँ ने हुलुनी माचे एग्जाम मा प्राम्र एया मैं नम्रो एवार्ड आपी बमा हो लगाने ताय खामती एवं माचे मांगा प्राम्र आजो आहिता मैं नम्र है UPSC एग्जाम मा जिगा जिगा उमे आम एठोगने कोचिंग आहिवदा ला होया गबदा आहोगा एवया अहमदाबाद माने IPL माचे फाइनल मैच अकगा मा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB में गुजरात टाइटन्स है मंगा विकेट माने आने गने चैंपियन शागा ही बता आओगा गुजरात टाइटन्स में अन्यू ओवर मा यू विकेट एबोबाय गने माऊ मंगा रन हुतेगा बमा RCB में जिगा ने हुलुयू ओवर

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी मेरे अलविदा करने का वक्त। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाला है आप सबका मन पसंदीदा आरजे साजिद इकबाल, जो बने रहेंगे आपके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों आई होप कि आप सब ने उतना ही एंजॉय किया है जितना मैंने इस सफर को आप सबके साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि यहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इससे पहले मैं जाऊं, आप सबको बता दूं, आज की सब के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता तिमतिम। तो अब मुझे यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपने RJ दाग में ननांश के साथ, और अब आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे हंसने के फायदे के बारे में। हंसना किसी थेरेपी से कम नहीं होता है। हंसना या खुश रहना किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए किसी थेरेपी से दोस्तों कम नहीं है। फिर चाहे आप टीवी पर कार्टून देखकर हंस रहे हों, या न्यूज़पेपर के जोक पढ़कर हंस रहे हों, या फिर अपने बच्चों की किसी फनी एक्टिविटी पर मुस्कुरा ही क्यों ना रहे हों, हंसना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हंसने से आपका स्ट्रेस कम होता है। इतना ही नहीं, आपकी एक हंसी स्ट्रेस को दूर करने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों को 45 मिनट तक आराम हो जाती हैं, जिससे आप काफी रिलैक्स फील करते हैं। दोस्तों, हंसने से शरीर में स्ट्रेस का हार्मोन लेवल कम हो जाता है, जो शरीर में बने एंटीबॉडी के लिए फायदेमंद है।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart play pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, हंसना दिल की सेहत को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करता है, जिससे हार्ट और कई अन्य बीमारियों का खतरा टलता है। इसलिए ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य बनाए रखता है। तो हम अब बताएंगे कि हंसने के फायदे कैसे होते हैं। पहला, दिल की सेहत बनाता है। इसे हंसने से शरीर में डोपामाइन हार्मोन की वृद्धि होती है, जो आपको खुशी का एहसास करवाने का काम करता है। इसके कारण दिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। इससे हार्ट से जुड़ी कई समस्याओं का रिस्क कम हो जाता है।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 MHz से। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिरप जिले के खोंसा में संपन्न। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत की। मई महीने में सकल GST संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून को दाखिल किए जा सकते हैं। आगामी 18 जून को मतदान और मतगणना एक ही साथ की जाएगी। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्र दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान से 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे बाजार रोजगार बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिरप जिले के खोंसा में संपन्न हुआ। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत करते हुए तिरप जिले के लिए APSTS की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने परिवहन विभाग और APSTS को जनता की सेवा के 5 दशक सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि APSTS दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों सहित अनगिनत समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता रहा है। उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मजबूत सड़क अवरचना अवसरों के द्वार खोलने और लोगों की आजीविका में सुधार लाने की कुंजी है। केंद्र मंत्री ने यह भी जानकारी साझा की है कि भारत सरकार केंद्र सड़क और अवसंरचना निधि CRIF तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHAIDCL द्वारा संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने की 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई के महीने में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्र GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रहा था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्य LPG सिलेंडरों की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये हो गई है। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता में 53.50 रूपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रूपये होगी। वही चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,283 रूपये हो गई है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान ने रडार में और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की है। जवाबी कुवैत ने कहा है कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान और अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मलेशिया ने 16 वर्ष तक कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों का आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनी पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग जैसे चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील

0: promulgated an ordinance amending the law to raise the Supreme Court's sanction strength to 37 judges from 33, excluding the Chief Justice of India. The result of the Joint Entrance Examination Advanced 2026 has been declared for admission to the premier Indian Institutes of Technology and other top institutions. Announcing the results, IIT Roorkee said, out of the total of 1,79,694 candidates who appeared for the examination on the 17th of last month, 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं नोक्ते कार्यक्रम।
2: अब आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वानोक्ते प्रोग्राम अतुरंगजा था वन भंगा सनपो दंग रे नंगनोक्ते खुबुच तटगत तजा हुम्बा चा एक तारीख जून जंग खुबुच को तेपा किम किम तेसिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मथजा सुप्रीम कोर्ट नंग वन भंगा अन्यान जज अपॉइंट होन का अरदी को सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड तंगलमा टोटल जज पा रूक रोम वानिंगित लिट का Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal ma social media nang jab ka President ma Chief Justice of India dam nang consultation hon di ko van banga anyan judge appoint hon ka PM Swanidhi scheme pathja pura 6 years complete de ka Prime Minister Narendra Modi ma ar scheme tarif ho nomange ka PM Swanidhi pa Amungja street vendors he life pa nyarang transform hon ka ar scheme through ma loan Financial inclusion diko growth rang anyan opportunities jayka. Social media post ko Prime Minister Narendra Modi mange ka ar scheme pa trust dignity diko empowerment ko nang. Tema scheme beneficiary se nang congratulate huan ka diko ngay ka. Hane mehnat diko entrepreneurship pa nation economy ko jomin majput po nay ka. Hane correspondent jun ko 2020 ko shuru dang ta diko. हेतु तो को 1,12,00,000 नो मजा लोन डिस्ट्रीब्यूट राहुन ता राज्यसभा 24 सीट रंग इची स्टेट नंग इलेक्शन नोटिफिकेशन पा थजा इश्यू होन में आंध्र प्रदेश गुजरात दिको कर्नाटका नंग वानबली वानबली सीट राजस्थान निया मध्य प्रदेश नंग वानरम वानरम सीट झारखंड नंग वाननी सीट दिको मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश निया मिजोरम नंग वांधे वांधे सीट रंग वोटिंग नंग में कैंडिडेट से थजाप मा 8 जून तो को हनी नॉमिनेशन फाइल ता होना वोटिंग पा अरजंग चीवान से तारीख को दंग में दिको वोट काउंटिंग पमिन अरजा को जो दंग में अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस APSTS 50 इयर्स पूरा दंग था नी रोम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मोनावा दिको अर प्रोग्राम पा कौन सा नंग मजा सक्सेसफुली रहेगा At a program called Union Minister of State for Road, Transport and Highway, Ajay Tamta Min Presentangwa, Tema Tirup District Rang APSTS Wanrom Anyan Bus Flag of Honka. Tema APSTS 50 years complete tangta congratulate Honka. Ajay Tamta Machoto Kuhi, Government of India, Central Road and Infrastructure Fund Diko, NHAIDCLWA Amungja Adong Infrastructure Project through Ma Arunachal Pradesh Nang, continue support hon hi nga ma. Deputy Chief Minister Chona Min Ma Maja naam se Multi-Purpose Culture Hall nang Class 10 niya Class 12 va Meritorious Student Session 2025-26 Felicitation Program ko attend dang va. Deputy Chief Minister Chona Min Ma student he nang hane academic achievement tha congratulate hon ka ko hane nang mehnat hon lama nya vipa continue hon rang advice hon ka. Deputy Chief Minister John Amin Mangeka state nang education infrastructure pa nya rang improve ra dang ta diko tema Thai Ahom community wa wan bangai students he rang nam se UPSC coaching center nang free coaching sponsor huan rang announce hon ka cricket ko Royal Challenger Bengaluru ma jo jante IPL title jin ka ara team ma final match ko Gujarat Titan nang 5 wicket maharai ka ara match pa Ahmedabad नरेंद्र मोदी स्टेडियम नंग मजा रंगपन लुम्बा फर्स्ट बैटिंग हो नुमा गुजरात टाइटन मा 20 ओवर 8 विकेट को 155 रन बनाएगा अरदी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मा 18 over 5 wicket ko 161 run bona lama jien ka. Aro match ko Virat Kohli ng players of the match rang select hon ka. Football match ko India SAFF Women Championship 2026 semi-final ng hui ka. India team ma maja Goa Margao ng Pandit Jawaharlal Nehru Stadium ng defending champions Bangladesh ng 3-0 ma hare ka. Diko semi-final pa Budpa Jakulomin. India Group A runner-up team Bhutan damnanga. Thejana nokte khobor pa akujraton mangta. Aro Akashwani Itanagar Dibrugarh va CC program. Khabang ko ganwang hosainia thajamwa ronyan sitat mangan.

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल, जहां हम दिन भर की भाग दौड़ और काम की थकान और जिंदगी के शोर शराबा के बाद लेकर आते हैं एक प्यारा सा सेगमेंट, जहां शाम सस्ती है सुरों की महक, अल्फाज की नजाकत और आपकी खूबसूरत पसंदीदा गीत।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में कभी कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब दिल खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज सीधा है खुदा तक पहुंचती है। जब इंसान अपने जज्बातों, अपने दर्द और अपनी उम्मीदों को अल्फाज नहीं दे पाता, तब संगीत उसका हमराज बन जाता है।

जी दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों, मोहब्बत का रंग भी कितना अजीब होता है। कभी ये दिल को सुकून देता है तो कभी उसी दिल को बेचैन कर देता है। और जब इश्क अपनी हदों से गुजर जाए तो इंसान दुनिया की नजरों में नहीं, अपने ही ख्यालों में बावरा हो जाता है। अब जो नगमा मैं लेकर आया हूं, उसमें मोहब्बत की वही मासूमियत, वही दीवानगी और वही खूबसूरत एहसास है जो सीधे दिल से होकर रूह तक पहुंचती है।

सटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए मोम बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, जिनका जन्म 1974 को हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि नवाजुद्दीन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। ऐसा एक्टर जिसे किसी फिल्म में बड़ा रोल हासिल करने में 12 साल लग गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल में उसने देश से लेकर विदेशों तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज के कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। कहते हैं जो लोग अपना सफर काफी नीचे से शुरू करते हैं वे काफी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में एक साथ तीन तीन फिल्में अपना जलवा बिखेरने जाती हैं। उन्हें एक नहीं चार फिल्मों के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 39 वर्षीय नवाजुद्दीन को 2012 की तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 और कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। शांत और संकोची स्वभाव वाले नवाजुद्दीन स्क्रीन पर एकदम अलग किस्म के किरदार करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से उन्हें बड़ा मौका देने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा कि इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि नवाजुद्दीन स्टार नहीं बन सकता, मैं फिल्में बनाना चाहता था और वे फिल्मों में काम करना चाहते थे, वे वाकई एक बेहतरीन कलाकार हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा अभिनय में इस कदर डूब जाते हैं कि वे रियल लगने लगते हैं। उनके इस पोस्ट से पता चलता है कि वे अपने काम में कितनी गहराई से समझते हैं। वे अपने हर किरदार में जान फूंक देते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए पहचान बनाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी मुंबई तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना जो भी दमखम लगाकर एक्टिंग करते हैं, इस खास मौके पर भी वो एक वक्त था जब शांत स्वभाव में बैठे रहते थे। दोस्तों, हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वे अपने शुरुआती दिनों में बिना ब्रेक लिए एक ही दिन में तीन तीन प्ले की रिहर्सल किया करते थे। एक वक्त ऐसा था जब वह पाई पाई को मोहताज थे, लेकिन आज करोड़ों के मालिक हैं। एक बार तो उन्होंने मुंबई से अपने आलीशान बंगले की तस्वीर शेयर की थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनके आलीशान बंगले की कीमत ही 12 करोड़ से ज्यादा है। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में इनका जन्म हुआ था। वह किसान परिवार से आते हैं। परिवार बड़ा था और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई गांव में करने के बाद उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए वह मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। कई दिनों तक उनके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं होते थे। हालात ऐसे थे कि दोस्तों के साथ कमरा शेयर करना पड़ता था और खर्च चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ती थीं। उन्होंने एक ऐसा वक्त भी देखा है जब दिल्ली में चौकीदार की नौकरी भी उन्हें करनी पड़ी। थिएटर सीखने और एक्टिंग के सपने को जिंदा रखने के लिए नवाजुद्दीन काफी मुश्किलें झेली हैं। बाद में वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े और जहां उनकी एक्टिंग को निखारने का मौका मिला। दोस्तों, उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना गैंग्स ऑफ फासेपुर। इस फिल्म में फैजल खान के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। द लंच बॉक्स, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, द माउंटेन मैन, मंटो और सीक्रेट गेम्स जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया है।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, जहां हम बात कर रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। ये दोस्तों आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर पुकुमा Hilpol ga alolo ken nanse urum ga kane baje rema tarmelum almela surunga nyese agum ara mulenji rema tanga de ta choba surunga shipuem ta pa chore jabjren shi nerme akom hare pubabla Chief Justice of India ne mimpu la Supreme Court ga jaje gudham nyudum chumum gola kane gobarim dukuba silo President Narendra Modi Murmu ya Supreme Court ga nyitine jaje anga ko appointment mujigik bakham mempato ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगम आहम तका का पगमिश ग्री क्लास सो के जितने सुप्रीम कोर्ट जज अंग हम प्रेसिडेंट या अपॉइंटमेंट मुझ पुकु न हमला रेबल के लो ओके जस्टिस मिनिस्टर धर्म अर्जुन राम मेघवाल या सोशल मीडिया ला पोस्ट मुल्क ग्री क्लास चपा पुकु न हमला में पा था तो ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कताकता माब सो सुप्रीम कोर्ट का जज चुमुंगला ओम गोब हरिनहम तुति याद ब मुझे

0: bulugol akin shatte ko nyapu ko nama ok ruene ji ala tolo group e g runners of bhutan ne semi final lo bharote he ki kamisri kne khamla me pato kasrungan shipu ye hebo
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

जहर से भरे बिच्छुओं में पले। अरे

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

की पूरे भाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रून FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का, प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी गीतों का।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: सौ 3.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अत।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस केम्बकम के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबी न्योदू तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

पदम चैकोचू।

बान्यम पोंगलाहम और पेवो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण FM 103.1 MHz पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope...
1: जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम भोले बिसरे गीत का। कहते हैं वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं, लेकिन कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं। उनकी धुनें, उनके बोल और उनसे जुड़ी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। जी हाँ दोस्तों, पसंदीदा आपके सेगमेंट भूले बिसरे गीत में, जहाँ हम पलटते हैं यादों के कुछ सुनहरे सफ़े और ढूंढ लाते हैं वो अनमोल नगमे जिन्हें कभी हमारे शामों को महकाया था, हमारी तन्हाइयों को सहारा दिया था और हमारी मुस्कुराहटों को वजह दी थी।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद। दोस्तों मोहब्बत जब दिल में दस्तक देती है तो अल्फाज अक्सर कम पड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक नजर, एक मुस्कुराहट और कुछ खूबसूरत अशआर वो सब कह जाते हैं जो जुबान नहीं कह सकती। आज के भूले बिसरे गीत में हम लेकर आए हैं एक ऐसा नगमा जिसमें मोहब्बत की नजाकत भी है, शर्मो हया की खूबसूरती भी और दिल के जज्बातों की सच्चाई भी। दोस्तों ये वो दौर था जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे, जब उर्दू की अदब, मिठास और शायरी की खूबसूरत संगीत में खुलकर सीधे दिल तक पहुंचती थी। तो आइए यादों के सुनहरे सफर में चलते हैं और सुनते हैं मेरे महबूब का बेहद खूबसूरत नगमा, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। पेशे खिदमत है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, मोहब्बत का सबसे हसीन और सबसे मुश्किल पहलू शायद इंतजार होता है। जब कोई दिल के इतने करीब हो जाए कि उसकी यादें रातों की नींद और दिन का चैन अपने साथ ले जाए। आज भूले बिसरे गीत में हम आपको ले चलेंगे उन सुनहरे दौर में जब मोहब्बत को शोर से नहीं एहसासों से बयान किया जाता था, जब गीतों के बोल सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाया करते थे। कहते हैं तेरी यादों का उजाला है मेरी तन्हाई में, वरना इस दिल के अंधेरों का ठिकाना क्या था। दोस्तों, वक्त है उस दिलकश नगमे का जिसमें जादुई का दर्द भी है, मोहब्बत की शिद्दत भी और इंतजार की खामोश दास्तां। फिल्म मेरे महबूब से सुनिए सदाबहार गीत याद में तेरी जाग जाग के हम। और मैं हूं RJ साजिद और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अरुण FM 103.1 MHz पे।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस शिलोंग केंद्र से विशेष कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्ष पर जो यादों के सुनहरा सफर। कार्यक्रम के स्क्रिप्ट राइटर हैं इंदिरा थापा राय, नरेशन पुष्कर भट्ट एंड शोभा गुप्ता, प्रोडक्शन
1: किया जाता
0: असिस्टेंट।
1: है।
2: Want to reach your clients?
3: Want to wish your loved ones?
2: Ride the airwaves of Akashvani Northeastern Service.
3: With attractive ads and promos.
2: A new business venture?
3: Or updating an existing one?
2: Wishes on special occasions?
3: Northeastern Service is here for you.
2: We offer airtime advertisements at reasonable rates.
3: In English and in Hindi.
2: We are available on the app News On Air.
3: On FM 100.1 MHz.
2: On AIR any channel of DTH.
3: For bookings and rates, call us on
2: 940-234-8899.
3: Or email us on
2: csunesair@gmail.com.
4: यह आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है जिसका प्रसारण शिलोंग से किया जाता है। जी हाँ, शताब्दी प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्ष यादों का सुनहरा सफर, स्टेशन ईटानगर। इस कार्यक्रम की पटकथा लिखी है इंदिरा थापा राय ने, स्वर प्रदान किए हैं पुष्कर भट्ट और शोभा गुप्ता ने, निर्माण सहयोगी है ममसी डोराबला और अश्मिना अप्पा ने, और इस विशेष प्रस्तुति की निर्माता है लेशराम चिंगसंग लंगपा। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की सुनहरी यात्रा।

0: सुबह की पहली किरण के साथ सियांग नदी का पानी झिलमिला रहा है। अभी पासीघाट शहर पूरी तरह जागा नहीं है, तभी पास की एक खुली खिड़की से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वह आवाज है रेडियो की। एक पुराना लोकगीत बज रहा है जिसमें यहाँ के समुदाय और पहाड़ों की गूंज समाई हुई है।
1: उधर तेजू में लोहित नदी के किनारे एक घर शाम की रोशनी में चमक रहा है और एक बुजुर्ग रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो पर मिश्मी भाषा में एक लोक कथा चल रही है, धीमी गहरी और शांत।
0: जैसे जैसे शाम हो रही है, तवांग बर्फ की सफेद चादर में खो रहा है। कमरे के भीतर बुखारी जल रही है और रेडियो अचानक मोनपा लोकगीत की मिठास से भर जाता है।
1: और जीरो घाटी में एक युवा अपने दोस्तों के बीच बैठा अपनी भाषा में एक लोरी सुन रहा है।
0: उसी समय ईटानगर की व्यस्त शाम गाड़ियों के शोर के बीच ट्रैफिक में फंसी एक कार से आवाज आती है। नमस्कार, यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जहां हम बात करते हैं दिल से दिल की। यही है रेडियो का जादू, यही है ऑल इंडिया रेडियो की ताकत जो हम सबको एक सूत्र में पिरोकर सारी दूरियां मिटा देती है। ऑल इंडिया रेडियो जो पिछले 90 वर्षों से करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है।

0: ऑल इंडिया रेडियो भारत की वह सशक्त आवाज जो देश के हर कोने तक सटीक जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाती है। इसी लंबी और ऐतिहासिक यात्रा में इसने लोकगीतों, समाचारों और अनगिनत कहानियों और लोक कथाओं के माध्यम से हमारी अनमोल संस्कृति को न केवल संजोया है बल्कि उसे जीवित भी रखा है।
1: आज तकनीक बदल गई है, हमारे हाथों में स्मार्टफोन आ गए हैं, लेकिन रेडियो आज भी लोगों को करीब लाने और फासले कम करने का सबसे सरल, मानवीय और आत्मीय माध्यम बना हुआ है। भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। देश के कुछ शहरों में रेडियो क्लब भी बने। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 8 जून 1936, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया।
0: ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर आसानी से चढ़ गया। ऑल इंडिया रेडियो ने शहर और गांव की दूरियां मिटाकर भाषाई बाधाओं को समाप्त किया और हर घर तक पहुंचकर यह एहसास दिलाया कि यह आवाज आपकी अपनी है। ऑल इंडिया रेडियो को आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं।

0: पूर्वोत्तर में रेडियो 1 जुलाई 1948 को शिलांग गुवाहाटी स्टेशन से शुरू हुआ। रेडियो की वजह से पूर्वोत्तर के लोग अब पूरी दुनिया से जुड़ने लगे थे। रेडियो उनका सबसे सच्चा और भरोसेमंद साथी बन गया था। सच कहें तो आकाशवाणी पूर्वोत्तर के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था।
1: भारत में जहां सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है वह है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इस राज्य की असली खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़ों में नहीं बल्कि यहां की सांस्कृतिक विविधता में है। यहां 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से भी अधिक उप जनजातियां रहती है। हर समुदाय की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी परंपरा है, अपने गीत हैं और अपने त्योहार हैं। उनके गीतों में उनका पूरा इतिहास जीवित है। अरुणाचल की अधिकांश भाषाओं की अपनी कोई लिखित लिपि नहीं है। हर कहानी, हर गीत और सारा पारंपरिक ज्ञान सिर्फ इंसान की आवाज यानी मौखिक रूप में जीवित है।
0: किसी बुजुर्ग के दुनिया से चले जाने का मतलब है उसके साथ एक पूरी दुनिया का चला जाना, एक पूरे इतिहास का विलुप्त हो जाना। आज के आधुनिक दौर में यह डर पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन आकाशवाणी इस लुप्त होती सांस्कृतियों और विरासत को सहेजने और बचाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित आकाशवाणी पासीघाट राज्य का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1966 को हुई थी, जब अरुणाचल को नेफा कहा जाता था। यहाँ रेडियो का पहुँचना किसी क्रांति जैसा था। आकाशवाणी पासीघाट के सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री गोजेन मोरन कहते हैं कि उन्होंने 1962 में रेडियो में काम शुरू किया। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने नेफा पर हमला किया और असमिया में रेडियो प्रसार शुरू किया। इसके जवाब में उन्हें नेफापिस भाषा में समाचार पढ़ने के लिए गुवाहाटी बुलाया गया। बाद में 1966 में उन्हें पासीघाट रेडियो स्टेशन में नौकरी मिली, जहां उन्होंने एक उद्घोषक के रूप में अपना कार्य जीवन शुरू किया।
2: रेडियो गुवाहाटी बलो 1962 दलो चाइनीज एग्रेशन से चाइना अरुणाचल डेलो नेपा पे तो है हो आबमला मिमा गया तो इधर कुछ में मिमा का इन रंग में चाइना पार्टी है इनको कहे रेडियो लोग बोलो आसामीस पे इनको नेपाल लगा पे आगो लोड कहे इधर कुछ में काउंटर बिना लगा पे गुवाहाटी बलो के बलो उन लोग में गोगला नेपा मिस अम्ला इनको न्यूज पोरी मत गलो मै तेलो गलो नेफा मि जमला न्यूज एम पोइला बलो काउंटर रे गितो तेलो गम गोक्तो मो देलो अगे रे बिरप्तो 1962 लोग नवंबर डिसेंबर अमोलो यप्तो तेलो के तेलो इरुंग मे मो कामिल मो मोगा अबुका अमिले बिपक गफ मा इला मो अगे रे मे पगला पासिया से हात को ए पासिया से हाकु नम मे 1966 तेलो ओमे बुल गोला गोपा रेडियो रेडियो सो गोतका अगर मैं तो हमने कैजुअल फोन लगा तो ऐ लगा लगो रेडियो इनको इतो तो दे लोग फर्स्ट अनाउंसर पे दे लोग कैजुअल पितो दे लोग के 1963 लोग नवंबर दिसंबर अमर दे लोग हमें कांटेक्ट लोग
1: साल 1967 में आकाशवाणी तेजू की स्थापना हुई। आकाशवाणी तवांग को 1974 में शुरू किया गया। आकाशवाणी ईटानगर की शुरुआत हुई 1986 में और साल 2000 को आकाशवाणी जीरो खोला गया। इन 5 केंद्रों ने न केवल संचार में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है बल्कि राज्य को देश की मुख्य धारा से जोड़कर स्थानीय बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर यहाँ की समृद्ध जनजातीय विविधता को जीवित रखा।
0: जब कोई भाषा मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते बल्कि दुनिया को देखने का एक अनोखा नजरिया भी मर जाता है। अरुणाचल की कई भाषाएं आज संकट में हैं क्योंकि इन्हें बोलने वालों की संख्या कम है और युवा पीढ़ी शहरों की ओर जा रही है। ऐसे में इन भाषाओं और बोलियों को संरक्षित कर आकाशवाणी ने शानदार काम किया है।
1: तेजू के एक बुजुर्ग लेकिन नियमित श्रोता श्री सोलोई गाडोंग कहते हैं कि आकाशवाणी ने बुजुर्गों की आवाजों, उनकी प्रार्थनाओं और लोक कथाओं को, उनकी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया है।
3: आकाशवाणी तेजू ने बहुत काम किया है हमारा लोकल ओकापुर में, और गांव का जो पुराना जमाना का फोक सॉन्ग वो सब भी आकाशवाणी ने किया है, रिकॉर्डिंग इस प्रकार से वहां प्रिजर्व किया हुआ है। तो आज का बदलते समय में बहुत ही जरूरी है कि डे बाय डे पुराना चीज तो गम होते जा रहे हैं, जिसे लगता है प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। आज का तो मॉडर्न जमाना है, पुराना चीज को तो तकलीफ होता है समझने में, बाद में फ्यूचर को कमिंग जनरेशन जितना भी आकाशवाणी से लेना पड़ेगा, जो भी वहीं से करना पड़ेगा, वही से ढूंढना पड़ेगा। बहुत पुराना चीज को यहाँ में बहुत प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, आने वाला युवाओं के लिए बहुत यूजफुल लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, दिल्ली में है, बम्बई में है, गुवाहाटी में है, बाहर में है, सब बाद में स्टडी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं आकाशवाणी में जाके, पुराना जमाना में किस प्रकार से पोजार सिस्टम होता था, मेरी सिस्टम होता था, कैसा फोकटेल्स होता था, कैसे गाना होता था, चेंटिंग होता था प्रीस लोग का। इसलिए आने वाला युवा के लिए बहुत फायदामंद है आकाशवाणी, कलेक्शन कर सकता है। जो कि आकाशवाणी ने ये सब काम किया है, आकाशवाणी ने इस प्रकार से प्रोग्राम करके हमारा मिसमी एरिया, हमारा लोहित जिला, हमारे तेजू के लिए फायदामंद काम कर रहे हैं।
1: वही आदि समुदाय के प्रसिद्ध लोक कलाकार डॉक्टर डेलोंग पाडोंग कहते हैं,
4: ऑल इंडिया रेडियो वेरी इम्पोर्टेंट रोल है हमारा प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फोक आर्ट में ना, और टुडे डिजिटल एरा में रेडियो का जो इन द फर्स्ट रोल ना, कनेक्ट विद रिमोट विलेज वेयर इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर स्टिल लिमिटेड, बिकम द वॉइस ऑफ द ग्रास रूट एंड कैरीज आवर ट्रेडिशन टू एवरी कॉर्नर। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए ना, रेडियो को ये कहना चाहूंगा द रोल ऑफ कल्चरल प्रिजर्वर्स, इसको मतलब अच्छा से रिकॉर्ड करना जरूरी है, ओरिजिनल फोक सॉन्ग और ओरल ट्रेडिशन को भी देयर प्योर फॉर्म में, असली जो प्योर फॉर्म में, इसको विदाउट डिस्टॉर्शंस और कमर्शियलाइजेशन। रेडियो आजकल के जमाना में ब्रिज बिटवीन जेनरेशन, कनेक्ट द विजडम ऑफ एल्डर्स विद द क्यूरियोसिटीज ऑफ द यूथ्स, हेल्प यंग पीपल अंडरस्टैंड एंड वैल्यू देयर कल्चरल रूट्स। रेडियो इज नॉट जस्ट ए मीडियम, वो तो हमारा एक गार्जियन है, हमारा आइडेंटिटी है, और कल्चर और ट्रेडिशन का ऊपर में भी रेडियो ही हम लोग का सबको ये कर रहा है, स्पेशली फोक आर्ट लोग को भी ना, आर्काइव करना, डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है हम लोग का यंग जनरेशन लोग को ना, प्रिजर्व करके इसको डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। फोक लोर्स, फोक स्टोरीज, जैसे कि फेबल्स, लालाबाई, सिलियन स्टोरीज, ये सब को हम लोग इसको और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, मॉरल एस्पेक्ट है, ये चीज को हम लोग यहाँ पे कहानियों की तौर पे अगर सही से डॉक्यूमेंटेशन आर्काइविंग करेंगे तो हमारा यंग फिर यूथ जनरेशन लोग काफी इसमें बहुत सारा कुछ फायदा मिलेंगे ना।
0: आकाशवाणी ज्ञान का वह अनमोल भंडार है जहां हमारे अतीत की धड़कनें और इतिहास की आवाजें सुरक्षित हैं। यही सुरक्षित है श्रीमती इंदिरा गांधी का वह ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने पासीघाट की एक जनसभा में दिया था।
5: जो भारत जैसे बड़े देश होते हैं, जहां विभिन्न तरह के लोग होते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, तो बहुत जरूरी होता है कि हर एक तरह से हम अपनी एकता को मजबूत करें, हर एक एक दूसरे प्रांत के लोगों को पहचाने और आना जाना भी रखे, तभी एकता मजबूत होती है और एकता से देश मजबूत होता है।
6: यहाँ जब से सीमा पर हमला हुआ, भारत की फौज सीमा की रक्षा करने को आई है, और उस फौज में भारत के सभी भाग के लोग हैं, मद्रास के, केरल के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, सभी जगह के लोग बारी बारी से आते हैं, वो हमारी देश की भी रक्षा करने को आए हैं, और खास तौर से आप सब लोगों की, क्योंकि आप इस सीमा के प्रांत में रहते हैं, क्योंकि आप सीमा के पास रहते हैं, तो आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है कि आप लोग मेल से रहें, चाहे पहाड़ के लोग हों, चाहे मैदान के लोग हों, चाहे हमारे असम के हों, बंगाल के हों, या अलग अलग जो ट्राइबल्स हैं वो लोग हों, सबको मिल के रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जरूरत है अलग अलग प्रांत के लोगों में एकता रहे, उससे और भी ज्यादा जरूरत है कि यहाँ जो सीमा पे रहते हैं वो एकता पूर्वक रहें।

आकाशवाणी ईटानगर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक भाषाई इंद्रधनुष है जो यह सुनिश्चित करता है कि आधुनिकता के शोर में भी ये भाषाई इंद्रधनुष संस्कृति और पहचान से जुड़े रहे। यहाँ हर दिन 11 जनजातीय भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। गालो, आपातानी, तागिन, मिजू मिश्मी, ताई खामती, तांगसा, वांगचो, इंदू मिश्मी, नोक्ते और निशी।

0: कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास को बनाते हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर के पूर्व स्टेशन डायरेक्टर श्री जेटी जीडो क्या कहते हैं।
1: Through the radio, they can pick up their own culture, particularly folk songs. Folk song of the tribal is the main life of the tribal people. Through that folk song, they sing, explaining their life, their activities, their culture. It exposes to the other people. Very, very important for tribal people. Otherwise, tribal culture should have been lost long, long before. It will help to preserve it throughout India, not only Arunachal. Radio played a lot of role in those days, which really give us valuable thing to understand. Social value, political value, cultural value, we get through the radio. Radio will speak in your heart. You remember that word always. That is the power of radio. I experienced that in the past. We really work for the people. People really achieve it, experience it, maintain their original true spirit of human life. Radio always teach you from where you are, what culture you had, your ancient people, what culture, what language you had. That type of thing always radio maintains. Radio is only your way which will guide you in truth what your past was, what your present is, what is your culture you had, what you are to do, what you are to maintain, what is your character. Radio will tell you. Radio will speak you deep in your heart. Radio will tell you your life experience in truth. Radio. Radio is the maintain your true culture.
2: आकाशवाणी ने राज्य के अनगिनत कलाकारों की प्रतिभा को पहचान कर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। अरुणाचल प्रदेश के भूपेन हजारिका कहे जाने वाले श्री बेंगिया हिमंत उनमें से एक हैं। उनका आकाशवाणी से जुड़ाव काफी गहरा है। वे कहते हैं कि उनके बचपन में पूरे गांव में रेडियो मिलना भी मुश्किल था और सब मिलकर रेडियो सुनते थे।
3: हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय हम लोग का मिलना भी बहुत मुश्किल था। उस समय में एक रेडियो मिलने से सारा आदमी जमा होकर 10, 20, 50 आदमी जाके वो रेडियो एक साथ हम लोग सुनते थे। उसी तरह आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते आपका असम का गाना भी रेडियो में सुनने को मिला, गुवाहाटी से। उसका बाद डिब्रूगढ़ से भी सुनना मिला। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते गया तो हम लोग जितना भी ज्ञान था वो न्यूज से ही मिलता था। वो न्यूज हम लोग रेडियो में ही मिलता। वो इतना हम लोगों को उत्साहित किया, उसी के वजह से हम लोग उसी से बहुत ज्ञान मिला, सीख मिला। तो उसी का आधार पर हम लोग रेडियो से बहुत गाइडेंस मिला, कुछ कुछ बहुत कुछ शिक्षा देता था, समझाता। उसी आधार पर हम लोग चलते चलते हम लोग आगे बढ़ने को मिला है। तो अभी 90 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मोबाइल भी निकल गया, मोबाइल में भी ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम सुविधा मिला है। और कल्चरल जो है हम लोग का जो फोक ट्यून है उसको बचाने के लिए अभी से अगर हम लोग जितना भी यंग जनरेशन है वो लोग मिलके अगर हम लोग ऑल इंडिया रेडियो का साथ जोड़ने से बहुत अच्छा होगा। अगर रिकॉर्डिंग के लिए हमारा ऑल इंडिया रेडियो गांव-गांव जाते हैं तो उसको साथ देना है, आपका फोक ट्यून को प्रदर्शन करना है। अगर अभी से हम लोग नहीं करेंगे तो और 10-20 साल के अंदर में गायब हो जाएंगे।
0: आज की पीढ़ी आकाशवाणी की वजह से स्वतंत्रता सेनानी मोजी रीवा और उनके जैसे कई वीरों के बारे में जान पा रही है। आकाशवाणी ने उन नायकों को भी अपने आर्काइव में जीवित रखा है जिनके नाम इतिहास में कहीं खो गए थे। मोजी रीवा जिन्होंने अरुणाचल में देशभक्ति का जज्बा जगाया और 15 अगस्त 1947 को पहली बार दीपा गांव में तिरंगा फहराया। उनकी बेटी श्रीमती जियो रीवा जीनी अपने पिता के बारे में बताती हैं।
4: अंग्रेजी ने इतना परेशान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा पिताजी को बहुत बार जेल गया है। 1947 में 15 अगस्त जब इंडिपेंडेंट हो गया तो दीपा जगह एक तो है, दीपा में सब जितना इन लोग का करने वाला काम करने वाला

0: Grup sob ayah erbu tadmi ayah ta anu ko mera pita jine bason dia o doli thadi ka bhi tha mera pita jine black host kiya hai pita jine kya uska baad mera pita ji ne to bason dia ye to azad ho gaya british jo ja raha hai abhi jayega aap log apna apna shanti se kiti bari karke raho bola baad mein wo gaam pura bhi ho gaya 1972 को मेरा पिताजी को दिल्ली में 15 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा गांधी जब वो था प्राइम मिनिस्टर था और बीबी गिरी जब प्रेसिडेंट था बुलाया उधर बुला के ताम्र पत्र दिया था 1972 रेस्पोर्ट में दिल्ली में।
1: रेडियो सिर्फ बड़े और प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है बल्कि यह आम लोगों का भी मंच है। आकाशवाणी सबकी कहानियों को आवाज देती है। यही तो है रेडियो की असली शक्ति, जहां हर वर्ग के इंसान को एक मंच मिलता है। यह वह जरिया है जो गुमनाम कहानियों को शोर की भीड़ से निकालकर हर दिल तक पहुंचाता है।

0: आकाशवाणी सुनने वाले श्रोताओं के पास आकाशवाणी से संबंधित न जाने कितनी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। वेस्टियांग के श्री लीगे एते अपनी एक पुरानी याद साझा करते हुए कहते हैं कि वो रेडियो सुनते हुए खेत में काम करते थे। मजाक में वो ये भी कहते हैं कि उनके पास रेडियो होने की वजह से गांव की लड़कियां उनसे प्रभावित होती थी और शायद उनकी शादी भी रेडियो की वजह से ही हुई।
1: रेडियो पर यो टीवी काम तो को न्यूज चला ही को पांच बजे अधिकांश चला तो अलो बारो बजे नीत मला को न्यू एशिन गालू एशिन और लेकिन वो को अधिकम रुकित लोशिन उन गाने पर लगला लेफ्ला गान तला कामी गला ये ला तदुला कामी ला इन मनी बात ही बोलो ये पहलो ओबुक मलाकू नदी लो तिल लेफ्ला मनु गान तब नाम लाई ये तो यम हक रुलियो मामचिंगे किनार ताक दुलो अंब ताजी कामी ला ये ला किनार ताक यम ताक दुए मत ताक दु बिजे ला गान ता ताको ओ मीज कम लगाई ताप कुला कु दाम जो मीज कम कु मनु हो कोई अब तक को गोल्ड कोला चलिए दुखी जगा रेडियो पे तो रेडियो पे नहीं हान में नोकन में एक नाम में मावे तो चलो रेडियो पे ला तो बेंदम चुक तक हम ला कुरु कर हम पर ले जम ने मुना दे तो कब जीत ना पाई अब आंगो पुई वो भी चेंज बा येर 73 ओगो इतनो करोगो येल मनीलो 77 ओगो दोलू हाला पाई।
2: पद्मश्री से सम्मानित सत्य नारायणन मुंडा यूर, जिन्हें सब प्यार से अंकल मूसा कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लाइब्रेरी मूवमेंट के संस्थापक हैं। आकाशवाणी की सराहना करते हुए वे कहते हैं, 1962 के युद्ध के दौरान प्रसारित देशभक्ति गीतों ने युवाओं में नई चेतना और राष्ट्रवाद का संचार किया। रेडियो आज भी मुश्किल सरहदी इलाकों में तैनात जवानों और स्थानीय निवासियों के लिए सूचना का विश्वसनीय और भावनात्मक सहारा है।
3: The radio became popular after 1960. In 1961, when a radio came to our home, it was a Mafi radio with a wall. And the very first benefit what we had was the English news program, and that gave us a lot of exposure to the English language. Large number of village rural people learning English became a main media. It was Akashvani, followed by the 1962 Indochina war, and that gave us spur to listening to radio because large number of patriotic songs started emerging across the country, and that made young people especially highly motivated about the what is happening around the country. So this contribution in a very friendly way is a very remarkable achievement of Akashvani, I can say. The young people of Arunachal and the educated people of Arunachal owe a lot to Akashvani and its radio services. And Akashvani Teju and Akashvani Itanagar, Pasighat and other stations have done a splendid service to promote our own languages in Arunachal among the common people. If we start using radio broadcasts effectively, it will go in a great way to promote our Arunachal languages, the different Indian languages.

0: डीएनजी कॉलेज ईटानगर के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, रेडियो की सादगी और उसकी पहुंच बेजोड़ है, बस जरूरत है इसे युवाओं के लिए थोड़ा आकर्षक बनाने की।
1: रेडियो को सबसे पहले जब 13 या 14 साल रही होगी तब मैंने रेडियो को अपने जीवन में पहली बार सुना। उसके बाद आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से संबंध रहा। कॉलेज डेज में आए, यूनिवर्सिटी डेज में आए, तो उस समय स्पेशली ये इंटरनेट ये सब की सुविधा नहीं थी। उस समय अधिक समय रेडियो को ही देते थे। इंडिया में इसका इतिहास समझ लीजिए तो 1st century से ज्यादा अरसे का है। 1920-21 के आसपास 23 में पहला रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था। मैं अभी भी सुनता हूँ रेडियो, अभी तो कम समय देते हैं लेकिन रोजाना रेडियो सुनना मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ लाइन है रेडियो हमारे लिए। लगभग जितनी भी मेजर ट्राइब्स हैं इनके लिए प्रोग्राम्स, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फिर उनके जो डिस्कशन के प्रोग्राम होते हैं, तो इससे जो दूर दराज के इलाके में जहाँ पे इंटरनेट असंभव है, नहीं पहुंच पाया, अभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहां भी रेडियो वेव मौजूद है। तो ये गांव को, रूरल एरियाज को भी जोड़ती है। तो उनको लगता है कि ये जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको रेडियो बहुत भली भांति अच्छे तरीके से उन तक पहुंचाता है।
2: वहीं युवा जर्नलिस्ट और डिजिटल मीडिया हाउस न्यूज फाइव की फाउंडर ईरानी सोनोवाल कहती हैं,
3: मेरे हाथ में आईफोन हो या हाई एंड एंड्रॉइड फोन हो, तब भी हम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम प्रेफर करते हैं कि फोन से ज्यादा हम रेडियो को ट्यून इन करने के लिए। काफी सारे अच्छे अच्छे शोज होते हैं उसमें। दूसरा चीज ये है कि हमें ट्रैफिक अपडेट्स मिलता है, वेदर अलर्ट्स मिलता है, लोकल न्यूज भी मिलता है हमें रेडियो के थ्रू, जो कि हमें डिजिटल से भी मिलता है। तो आई थिंक डिजिटल एरा में भी रेडियो का काफी रेलेवेंस है, और खास करके अरुणाचल जैसी जगह पे आकाशवाणी नॉट जस्ट वाइल ड्राइविंग बट हम जब घर में बैठते, आई ट्राई टू यू नो, हर रोज नहीं होने से भी सैटरडे संडे को मैं जरूर लॉग इन करती हूँ। और इनफैक्ट मैं भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके ही कुछ काम कर रही हूँ, आमदनी कर रही हूँ। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उससे मुझे काफी सारा कुछ सीखने को मिलता है। आप कर ही रहे हो बहुत सारे शोज, तो आप कर ही रहे हो, यूथ सेंट्रिक हो या अलग अलग फील्ड सेंट्रिक, जैसे कि फार्मर सेंट्रिक हो, वो तो आप कर ही रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कॉलेजेस में जाके थोड़ा बहुत अगर आप प्रमोट करो या समझाओ कि आकाशवाणी कैसे काम करता है, अगर आप यूथ से ज्यादा जुड़ पाए तो शायद और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा आपका नेटवर्क।
2: आकाशवाणी वह आवाज है जो केवल कानों से सुनी नहीं जाती बल्कि रूह से महसूस की जाती है। इस डिजिटल दौर में जहां दुनिया मोबाइल और टीवी स्क्रीन तक सीमित हो गई है, रेडियो आज भी ऐसा साथी है जो आंखों के आगे तस्वीरें बनाता है। आकाशवाणी के इस विशाल ज्ञान भंडार को अर्जित करने में अनेक लोगों का योगदान है।

0: हम आभारी हैं उन उद्घोषकों के जो स्टूडियो में बैठकर अपनी आवाज से हर पल आपका साथ निभाते हैं, उन रिकॉर्डिस्टों के जो भारी उपकरण लेकर दूर दराज तक पहुंचते हैं, उन इंजीनियरों के जो मिस्कुलों में भी डटे रहकर ट्रांसमीटरों को निरंतर संचालित रखते हैं, और सबसे बढ़कर आप श्रोताओं के जिन्होंने रेडियो को किसी उपकरण की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार की सदस्य की तरह अपनाया।
1: अरुणाचल प्रदेश में आकाशवाणी पासीघाट, तेजू, तवांग, ईटानगर और जीरो केंद्र सिर्फ प्रसारण सेवा नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज है जो पहाड़ों को पार कर घाटियों में गूंजती है, और अरुणाचल प्रदेश में भारत की उपस्थिति एकता और विश्वास को और भी

मजबूत बनाती है। तरंगों के माध्यम से शुरू हुआ यह सफर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपकी उंगलियों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आज भी वही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष यादों का सुनहरा सफर, विशेष प्रस्तुति आकाशवाणी ईटानगर से। पटकथा इंदिरा थापा राय, स्वर दिया है पुष्कर भर और शोभा गुप्ता ने, निर्माता है लेशराम चिंगसांग लाकपा। और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है जिसका प्रसारण शिलांग से।
1: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नॉर्थ ईस्टर्न सर्वे शिलांग केंद्र से विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पर, जो यादों का सुनहरा सफर है। दोस्तों, कार्यक्रम के स्क्रिप्ट राइटर हैं इंदिरा थापा, नरेशन पुष्कर भट्ट एंड शोभा गुप्ता, प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं मुमसी दोरा बला और ए आप्पा, प्रोड्यूसर हैं लाइशराम चिंगसंग लकपा। जी दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम में आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तानातुम। दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित एफएम गोल्ड पर सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर, शुभरात्रि।
2: To their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's effort to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free

0: open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. A bench of Justices P.S. Narasimha and Arvind Kumar said the National Testing Agency is already facing multiple challenges after the cancellation of the examination. The court posted the matter for hearing on the 27th of next month. The IMD has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karikal tomorrow. 22 Indian rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme or TOPS Development Group ahead of the Asian Games to be held in Aichi, Nagoya, Japan later this year. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Arun Kumar. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर दिया बल। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को देंगे बढ़ावा। और मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषधि एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिनों के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री मारियो वोक्ट से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती साझेदारी और सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है और बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने संयुक्त रूप से इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम उल्लंघन और इसराइली शहरों और नागरिकों पर हमलों के बाद उन्होंने सेना को बेरूत के दक्षिणी क्षेत्रों में हमले का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक इन स्थानों से काफी स्थानीय लोग संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर यातायात जाम हो गया है। ये इलाका हिजबुल्ला का गढ़ है। ईरान ने इस बढ़ते संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के साथ वार्ता को निलंबित कर दिया है। इस बीच अमेरिका और ईरान ने चल रहे राजनयिक संपर्कों के बावजूद नए सैन्य हमले भी किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कुवैत पर हुए हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने ईरान के रडार और ड्रोन कमांड ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने रविवार रात कुवैत में तैनात अमरीकी सेना पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने पुष्टि की कि दोनों मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और कोई भी अमरीकी सैनिक घायल नहीं हुआ। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे कुवैत पर अमरीकी हमलों की सीधी प्रतिक्रिया बताया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि 28 वाणिज्यिक जहाज कड़ी नौसैनिक निगरानी में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरे। इस बीच इसराइल की सेना ने सीरिया के कुनेत्रा और दारा प्रांतों में नए सैन्य अभियान चलाए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: मलेशिया बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया है। आज से लागू नए नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आयु सत्यापन प्रणाली और बाल सुरक्षा सुविधाएं लागू करनी होंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर 10 मिलियन रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जबकि ब्राजील ने माता पिता की कड़ी निगरानी और आयु सत्यापन उपायों को अनिवार्य कर दिया है। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के लिए कल हुए मतदान में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में फैसला न होने के बाद इस महीने की 21 तारीख को वामपंथी और दक्षिणपंथी उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का मतदान होगा। किसी भी उम्मीदवार को सीधे जीत हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट नहीं मिले। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मतदान में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रारंभिक परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग ने आगंतुकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों